नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के सौर मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया।

0: किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, इंसान की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

धाकड़ धा धाकड़ धा धा धाकड़ धा चरण धरण धरत पाग परत नहीं परण झांझर जनक झन न न न ताना न दिर दिर दीन ता तुम ताना न न न छन न न न

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 221। पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। प्रस्तुति है चारुबाला खरे की। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमें राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार गायक हेमंत कुमार पर। सुनिए इसका पुनः प्रसारण 9:30 पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 पिटारा में सुनिए सेहतनामा जीवन शैली और योग। योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 से गुनगुनाइए सुरीला सफर में। 2:30 पर सदाबहार नगमे। तीन बजे सुनिए सखी सहेली कार्यक्रम। 4 पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे में सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का 2रा भाग। प्रस्तुति है कल्पना शेट्टी की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। पर सुनिए संध्या रंजन। 7 सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 हवा महल में सुनिए झलकी जीभ की तपस्या। लेखन है डॉक्टर कुमारी का। निर्देशन है स्वतंत्र कुमार ओझा का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 सुनिए आपके लिए कार्यक्रम। रात 10 छाया गीत कार्यक्रम पेश होगा। आलेख और स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 221।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: वायलिन और सारंगी के बाद गज वाला वाद्य इसराज प्रचलित है। इसराज का यही राज है कि यह कब बना, कहां बना और किसने बनाया, यह कोई नहीं जानता। कुछ विद्वानों का मत है कि यह सारंगी और सितार का मिश्रण है। कुछ गुणियों का मानना है कि यह सारिंदा और सारंगी का मिश्रण है। कुछ संगीतज्ञ इसकी उत्पत्ति का आधार केवल सारंगी मानते हैं। जो संगीतज्ञ सारंगी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, उनका इस संबंध में कहना है कि मुगल काल में महिलाएं जब हरम में गायन किया करती थी, तब उन्हें सारंगी की संगति उपलब्ध नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारंगी वादक अधिकतर पुरुष ही हुआ करते थे। महिलाएं सारंगी बजाने में असमर्थ हुआ करती थी, क्योंकि सारंगी यह वादन में कठिन ही नहीं बल्कि वह नाखूनों की सुंदरता को भी नष्ट करती थी। इसीलिए सारंगी के ऊपरी भाग को कुछ लंबा कर इसमें पर्दे लगाए गए। इसराज की उत्पत्ति के संबंध में एक मान्यता यह भी है कि सारंगी सामान्यतः कोठों पर बजाई जाती थी। रावण हत्था, सारिंदा तथा चिकारी आदि गजवाद्य लोक संगीत में प्रयुक्त किए जाते थे, इसलिए अपने लिए गज का एक नया सुविधाजनक वाद्य निर्माण करना था, जिसे उसने इसराज नामक वाद्य बनाकर किया। प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में इसराज का उल्लेख नहीं मिलता है। 18वीं शताब्दी तक उर्दू एवं बांग्ला कृतियों में भी इस वाद्य का वर्णन उपलब्ध नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि यह एक आधुनिक वाद्य है। यह भी संभव है कि इस वाद्य की निर्मिति मयूर या ताउस वाद्य के आधार से की गई हो। तो आइए अब हम अलाउद्दीन खां का इसराज वादन सुनते हैं। राग है भैरव।

अब हम इसके आकार और प्रकार पर विचार करेंगे। इस वाद्य के तीन आकार प्रचलित हैं। इसमें कुंडी और दांड के दो मुख्य भाग होते हैं। इनका नाप अलग-अलग होता है। कुंडी के ऊपर सारंगी के समान चमड़ा मढ़ दिया जाता है। इसी चमड़े पर घुरज की स्थापना करते हैं। दांड में 16 से 19 तक पर्दे लगाए जाते हैं। इस राज में सामान्यतः मुख्य चार तार होते हैं। बाज के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर में, इसके बाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाया जाता है। इसमें तरप के तार भी लगाए जाते हैं, जिनकी संख्या 15 से 20 तक होती है। इन तरबों को राग के अनुसार अथवा अचल थाट में मिलाया जाता है। तरबों के लिए पीतल के स्थान पर फोलाद के तारों का प्रयोग किया जाता है। इस राग को बजाने का यह तरीका है कि इसको पालथी मारकर उसकी कुंडी को नीचे की ओर रखकर या फिर गोद में रखकर या घुटने पर टिकाकर वादन करते हैं। दाहिने हाथ में गज पकड़कर तारों पर गज संचालन किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से स्वर निकाले जाते हैं। रविंद्र संगीत में इसका प्रयोग बहुत ही किया जाता है। इसलिए इस राग को बंगाल की सारंगी भी कहते हैं। कुछ कलाकार इस पर एकल वादन कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। अब हम श्री आशीष बंदोपाध्याय का इस राग पर बजाया गया राग जौनपुरी सुनते हैं।

गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में सुन रहे थे अमानत फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: सजा फिल्म से सुन रहे थे आप संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाज में गाना राजेंद्र कृष्ण के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेमंत कुमार की आवाज में सुन रहे थे शिकस्त फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंगे हैं जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।
1: पामा पधा पगा सपा, दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए।
2: दिल की उमंगे हैं जवान।
0: बहुत अच्छी।

दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

0: हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाजों में आप सुन रहे थे मुनीम जी फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना हिल स्टेशन फिल्म से। एसएच बिहारी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।

डिटेक्टिव फिल्म से आप सुन रहे थे गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना, शैलेंद्र के बोल मुकुल रॉय का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

झनक झनक पायल बाजे इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत।

हाउस नंबर 44 फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे सट्टा बाजार। इस फिल्म से ये गाना गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमेरा ही प्यार के सुनिए इस कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं ममता फिल्म से।

ममता फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल रोशन का संगीत। अपनी खास अंदाज से गानों को सदाबहार बनाने वाली आवाज रही है हेमंत कुमार की।

0: एक झलक इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना आशा भोसले और हेमंत कुमार की आवाजों में, SH बिहारी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का। आज हम याद कर रहे हैं हेमंत कुमार को, जानिए इनके बारे में कुछ किस्से कुछ बातें आज के फनकार कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर, और इसका पुनः प्रसारण सुनिए आज रात 9:30 पर।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज़ जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित।

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमवर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने

0: प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाए और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में जी

सात शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती मां रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में पानी की कमी हो रही है और साथ ही जल प्रदूषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है जल, यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस जोशीले गाने के साथ, भाग मिल्खा भाग फिल्म से। सिद्धार्थ महादेवन के बोल, माफ कीजिएगा, सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में बोल है प्रसून जोशी के, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: Rica, ooh, Sarah, Rica, Sarah, Rica, you got it.

बंगिस्तान फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना सोना मोहापात्रा अभिषेक नैलवाल और शादाब फरीदी की आवाज़ों में, पुनीत कृष्णा के बोल थे और म्यूजिक राम संपत का। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड में द डिस्को किंग कहे जाने वाले पद्म भूषण से सम्मानित लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का बर्थडे।

0: डिस्को डांसर इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना पार्वती खान की आवाज में अनजान के बोल और संगीत बप्पी लहरी का। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में आप सुन रहे हैं लकी नो टाइम फॉर लव। इस फिल्म से ये गाना समीर के बोल है और संगीत है अदनान सामी का।
1: चोरी चोरी चुक के से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

वसुंधरा दास के और शान के साथ लॉय मेंडोसा की आवाजों को आप सुनेंगे कल हो ना हो फिल्म्स में। जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक।

धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया था जैस्मीन सैंडलाज ने और इस गाने में रैप किया था रिबेल ने। इस गाने की लिरिक्स लिखी है जैस्मीन सैंडलाज ने और रिबेल। म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का।

0: सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सरैया की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। इस गाने को लिखा था प्रिया सरैया ने, इसके म्यूजिक तैयार किया है सचिन जिगर ने और फिल्म है अ जेंटलमैन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना बयां कर रहा है लाइफ की एक ऐसी फिलॉसफी जो बनाएगी आपके हर दिन को खास। शान और अनुष्का मनचंदाना की आवाज में गोलमाल 3 फिल्म से कुमार के बोल म्यूजिक है प्रीतम का।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
0: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: यहाँ आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं चोरी चोरी आके शोक।

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए, किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की शर्त

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल बर...

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

बेचारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है, दरअसल वही महान कहलाता है। और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है। अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं, 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है।
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको। शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे।
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है। और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है। तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए। कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ये चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
0: अच्छा
1: जी,
0: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में में यकीन रखते हैं वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
1: जी हाँ,
0: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
1: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
0: जाग जाएं
1: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
0: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
1: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कड़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते,

0: पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप दोपहर के खाने में। फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं। पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना हो।
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो, इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता है।
1: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है। तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए। यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी।
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

पता जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं आहार के बाद।

0: विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पर मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की।
0: जी
1: विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं, या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शिथिलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ
0: रिलैक्स,
1: रिलैक्सेशन,
0: एंटरटेन करना।
1: इंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना,
0: जी
1: वो भी
0: जी
1: हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी, पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का
0: या
1: शौक है,
0: किताबें
1: म्यूजिक
0: पढ़ना
1: का,
0: पसंद
1: किताब
0: है।
1: पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का, या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए, और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं, या
0: जी
1: कुछ हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे।
1: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है, कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: अनुशासित टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते, तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
0: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा।
1: शुद्ध होगा।
0: जी जी।
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखा।

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में, सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं,
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो हैं वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया
3: आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए, और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
3: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकार नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
2: वो टेक्निक जो आप बता रही थी उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
3: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
2: विचलित नहीं करेंगी,
3: विचलित करेंगी नहीं आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से,
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
2: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
3: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
2: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
3: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
2: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
3: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
2: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
3: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
2: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
4: उठे सबके कदम देखो रम पम पम,

0: बम बम हंसो और हंसाया करो
1: उठ सबके कदम देखो रम बम बम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तेरा रम बम बम हंसो।
2: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में है, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखें कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा।
2: और फिर से अपना काम करना,
3: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
2: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
3: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपके आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
2: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
3: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
2: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
3: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए, कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जिससे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन।
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

हाल क्या है दिलों का, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, अनोखी अदा ये था फिल्म का नाम।

जगजीत सिंह की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। राजेश रेड्डी ने इसे लिखा था, संगीत दिया था जगजीत सिंह ने, और आईना ये था एल्बम का नाम।

0: लकी अली को अभी आप सुन रहे थे अक्स एल्बम से। ये गीत लिखा लकी अली ने और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती

सिर के साथ तमाम। मैं शायर हूँ मेरा है वास्ता हसीनों से, तेरी फुर्कत में मैं सोया।

टच पाए रखा, शोला दबाए रखा।

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

0: बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम

कि तू ही तो है। काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं तेरा पता भी तो नहीं।

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशाज लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने, संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

शान और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे। इस गीत में दिल चाहता है फिल्म का नाम था। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: तलत अजीज की आवाज में ये रचना अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: रंग

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको

0: कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोयरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या हैं? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
2: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों,
2: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
3: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
2: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
3: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
2: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
4: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
5: तो सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
4: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
2: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
3: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
6: सू
4: जी,
6: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
4: जी हाँ।
6: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
4: जी डॉक्टर साहब।
6: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
4: मैं पूछती हूँ।
2: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
3: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह जॉन्सी, अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
3: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह

0: उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
1: क्या कम हो गए हैं?
0: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉनसी उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
0: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
1: जॉनसी, जॉनसी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं मेरी तरफ देखो जॉनसी।
0: Only four.
1: मेरी तरफ देखो
0: सू, only four. ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
0: 3 पत्तियां।
1: पत्तियां?
0: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
1: हाँ हाँ,
0: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
1: क्या लगता है?
0: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉनसी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
0: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओह जॉनसी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनविच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी।
0: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, योंसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। योंसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
0: सू मेरी दोस्त।
1: हाँ जॉन्सी।
0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। योंसी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
0: सू।
1: हाँ जॉन्सी।
0: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
1: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
1: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
1: हाँ
0: हाँ,
1: मैंने देखा। मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
0: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
0: हाँ।
3: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाए।

0: हाँ वही, ओह जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेयरमैन।
0: ओ गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उसे बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था जॉनसन। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेयरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉनसी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनविच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, एआर रहमान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे ए आर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा। ए आर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके इस सफर में आपके संग। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नजारे उधर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो अगर, तो शाम क्या हर रात फिर से सवेरा बन जाए। कतरा कतरा कर चलो हम एक कहानी में ढल जाएं। तो इबारत एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दी है और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैसेजेस में आया है।

पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

एक अजनबी हसीना से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज थी। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी ने लिखा, यानी कि बहुत पॉपुलर, इसीलिए शुरुआत इसी गाने के साथ की गई क्योंकि आपकी जो फरमाइश है सर आंखों पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि हमारी जो इबारत है उससे भी काफ़ी मॉडिफिकेशन करके या उससे इंस्पायर होके बहुत सारे इबारत लिखी गई है, कविता लिखी गई है, कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। हमारे श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि सुरीला सफ़र कारवां के हम सफ़र साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला के इबारतों में आज भी दिल के किसी कोने में छुपी शून्यता को प्रेम की मीठी एहसासों से पूर्ण करने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सच है, उम्र की सीमा बंधन को दरकिनार कर दिल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अनायास ही मोहब्बत की दस्तक दे जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं, मुस्कुरा उठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां अजनबी हसीना तो क्या, अपनी हसीना भी भाव नहीं देती। अगर चाय मांगो तो जवाब नहीं मिलता, खुद से बना लो। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक भी तो जिंदगी में रंग भरती है, ये भी अलग तरह का रंग है। बिल्कुल। साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो वीरान राहों को गुलजार बना देता है वो है मोहब्बत का रंग, और साधारण दिनों को खास बना देता है वो है मोहब्बत का रंग। जब प्रेम दिल में घर कर लेता है तो खतों के पन्नों पर शब्द नहीं भावनाएं उतरती है। यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नजर में तो बहुत आते हैं, अब जो नजरों को भा जाए बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, और मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत।

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही ख़तों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने ज़माने की खुशबू, वो ख़त लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियाँ कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, एसएमएस पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो ज़रूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है। साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका मैसेजेस पर।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिखा लिया गया है, और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहाँ चल रही है वहाँ पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की, तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी, जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं, वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन हैं।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना

0: सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में, और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना? सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं, कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतजार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि खत लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं, एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है। मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएं, ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल शामिल होगा, आप बस खत लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं उस गीत के बारे में, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत के स्टार्टिंग में कांच के ग्लास पे जो संगीत इजाद किया गया है आर डी बर्मन द्वारा, वो काबिले तारीफ है, और वो भी अक्सर किचन में कांच के बर्तनों पर ऐसी किसी धुन की तलाश में रहते हैं और बहुत मजा आता है। ये गीत उन्होंने जहन में सोचा था, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यादों की बारात जिस सिनेमा हॉल में देखी थी वो सिनेमा हॉल टूटकर मॉल में परिवर्तित हो गया है, और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपये में फिल्म देखी थी यार, 160 रुपये का टिकट आया था, इतने सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वही है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? जरूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हो, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हो, या कोई पुरानी याद जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है, मुझे लिख भेजिए। इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवें नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फे, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताज़ा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहाँ जहाँ उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहाँ पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाकई याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाज़त चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में। मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफ़र में आपका साथ दिया, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आप बने रहें विविध भारती के संग।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती माँ रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

शोषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है जल, यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसे
3: जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है, मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें एआई को जोड़ देती हैं, तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
5: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद

0: पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: UNSC reform would be grossly inadequate.
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH

0: नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: करो।
1: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एस टी बर्मन की तर्ज थी।

0: लिखा ओबी नैयर का संगीत।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती देर भी नहीं लगती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
2: और कोशिश करिए
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
2: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
2: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहां बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़े, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़े, जीवनी पढ़े,
2: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
2: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती, आपको किस तरीके से अजय

0: देती है। अजय मतलब ये आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन
0: बिल्कुल
1: कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन
0: जब
1: को
0: बिल्कुल
1: सशक्त बनाते हैं, हमारे
0: हाँ
1: श्रोता बता सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: हमारी
0: कि किस तरह से
1: सखियां।
0: अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं
1: और कई बार
0: तो
1: क्या होता है आपके
0: जी
1: घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भैया आज तो पति देव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे
0: बिल्कुल
1: करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
0: बिल्कुल। और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल
1: आ
0: सुहावने
1: हा हा हा ये तो
0: कि
1: होता है।
0: अक्सर होता है ना हम लोगों की दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम
1: इसके
0: कर रहा
1: मजे
0: है। हाँ,
1: हैं।
0: लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि
1: बिल्कुल
0: किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
1: बिल्कुल, उसकी
0: तो
1: जिंदगी में क्या
0: बिल्कुल
1: क्या घटा, कैसे घटा, उसने
0: जी
1: कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब
0: जी
1: बातों को नहीं जानते हम। केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
0: जी तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
1: ये भी
0: और
1: बताएं कि इनकी जिंदगी में
0: हाँ
1: दूर के
0: ये
1: ढोल
0: किस
1: सुहावने
0: तरीके से
1: हुए
0: इस चीज
1: क्या।
0: को समझते हैं अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात
1: अरे
0: करेंगे
1: वाह क्या बात
0: जो
1: है।
0: हैं डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना
1: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है हर
0: जबकि
1: समय।
0: विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है
1: आपने कंट्रास्ट कर दिया है,
0: जी,
1: बातें हल्की
0: क्योंकि
1: फुल्की
0: इस
1: कही
0: विषय
1: है
0: पे अक्सर
1: और विषय
0: तकरार
1: रखा है
0: हो जाती है
1: घरेलू बजट। बाप रे,
0: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है
1: हाँ ये तो
0: पूरे घर में,
1: बड़ा
0: मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना
0: जी
1: वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं।
0: बिल्कुल। और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
1: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे और अभी हम सुन लेते हैं
0: एक
1: गीत।
0: गीत जी।

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी एफएडी ने IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान

0: मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेषण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेषण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती, कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
1: खुशी
0: होती
1: होती
0: थी
1: कि ना, कि अब चलो ये जरूरतें हमारी जो थी
0: हाँ,
1: ये
0: हम
1: पूरी हो
0: पूरी कर
1: जाएगी।
0: लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो कितने उन लोगों को इसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल।
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है, और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग, और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी नहीं है आपको पता हो उसके,
0: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता। वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
0: कि
1: वो कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
1: नहीं हटा किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो तंग करने वाले

0: निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
1: कि आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
0: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
0: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
1: तो उसका फायदा उठाया जाता है। उसका फायदा उठाया जाता है, इसलिए जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
0: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी की कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
1: बिल्कुल सही,
0: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश
1: मत करें, सफाई देना
0: उसको, वही सफाई अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
1: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
1: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है, जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पढ़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सही होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
1: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
1: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
0: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी
1: सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
0: अंतराल का समय हो गया है,
1: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
0: जी,

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस आप हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्व से धीरे और हम जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे क्यों देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं
1: कि आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया।
1: बिल्कुल है ना, ये थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज का सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जा जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से अपने आपसे निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो
1: बहुत जरूरी है,
0: हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा, हम भावुकता में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए।
1: और उसके लिए जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और बात में हमें उसका पछतावा भी होता है, लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इस बात का हमें ध्यान रखे, बोलना
0: समझ
1: चाहिए,
0: के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल।
0: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है,
1: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए,
0: क्योंकि
1: ये चाटुकारिता में
0: चाटुकारिता में आता है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
1: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है,
0: बिल्कुल होती है ना? और तो मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
1: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहे कि वो आपकी तारीफ करेंगे,
0: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है,
1: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को, मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ करती हूँ।
0: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखिए, अच्छे से तारीफ।
0: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक गीत सुनवा दें।
1: जी

0: सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
1: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है।
0: जी, और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
1: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है।
0: जी, और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है, वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
1: क्या बात है।
0: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
1: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की, और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
0: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
1: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
1: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती, कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
1: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है, इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है, दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
1: अच्छा, आपको गीत की तलब हुई गई है। चाय की तरह
0: जी।
2: जरा नजरों से कह दो जी,

0: तो धूल के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देख के तो देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं, और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना,
0: हाँ
1: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय
0: जी जी
1: बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल। और फिर वापस करो, ये करो, गुस्सा
1: वो
0: आता है
1: सारी
0: ना उस
1: प्रक्रिया
0: समय,
1: शुरू हो जाती है।
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस सच में।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास आकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण
0: जी
1: जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मजे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: बहुत
0: चमकता है।
1: सुंदर लगता है, हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर
0: बिल्कुल।
1: चेहरा है ना, चांद जैसा
0: लेकिन
1: हमारा टुकड़ा
0: जी,
1: है
0: लेकिन
1: ना,
0: जब से वहां पे पहुंचे तब से
1: पता चलता है कि
0: थोड़ा
1: भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि
0: जी
1: सच्चाई क्या है।
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं, वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया मना।
1: रलियामणा
0: जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत, और रलियामणा मतलब सुहाना,
1: सुहाना।
0: यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
1: कहा कि पहाड़ों को
0: उसको,
1: दूर से जब
0: हाँ
1: हम देखते हैं, वहीं एक श्रोता भी लिखते
0: जी
1: हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर
0: जी
1: जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे ही
1: अच्छे
0: सही
1: हैं।
0: है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारे श्रोता हैं जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने इस
1: बिल्कुल,
0: चीज को
1: लेकिन
0: समझा।
1: यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी
0: अच्छी
1: ही
0: लगेंगी। ऐसा नहीं है
1: लगेंगी।
0: कि आपको निराशा हाथ लगी या कुछ,
1: हाँ
0: आप
1: इस
0: बिल्कुल
1: बात
0: हमसे
1: का
0: मिलिए तो हम आपको
1: वैसे
0: और
1: ही
0: बहुत अच्छी
1: लगेंगे
0: तरह से आपसे बात करेंगे।
1: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
0: जी
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो
1: है
0: अब हम
1: तो।
0: बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियों बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा, ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और भी पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता, तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बचत की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन
0: जी
1: जाता
0: बन
1: है।
0: जाती
1: सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में
0: जी
1: तनाव
0: देखिए,
1: उत्पन्न।
0: आपका एक आप श्रोता का, आप हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया,
1: हाँ
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना,
1: बिल्कुल
0: वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है, जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे, वो
1: बिल्कुल
0: हमसे
1: बिल्कुल,
0: कफाला हो।
1: हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई,
1: जी
0: अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है
1: जी
0: और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती
0: और
1: श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विद। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज़्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लगता लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, तो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।
2: जरूर।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा कैसी लगी आपको ये किताब, वही हद तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो हैं अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से हुआ। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिया दर्द लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने कहते जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है। मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे से सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब? तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के, जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए?
1: आदमी का वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
1: वो समथिंग। हाँ

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही, आपकी जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी। हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए। बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनालिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे, मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ, साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो, इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो, ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती हूँ, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं कर दिया अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं, देखिए लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंस पे बेस्ड होती थी, और कहानियाँ रट्टी पट्टी की कि दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है, एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो, इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है, और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
0: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आए तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है, प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी, मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओ, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं, और दोनों बच्चे मेरे, कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है, और हाँ, साहब बीबी गुलाम का भी आया है। हाँ, साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब की।
1: हाँ, हेमंत कुमार साहब की आवाज, वो बहुत अच्छा था।

0: मीना जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक
1: थे। बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो यूज टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया। वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने। वैसे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वाज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: चखा।
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं। उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे ख्याल से बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है। तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफ़ा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी। और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो बहुत। और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने, आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे, एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाए,
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
2: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी, तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजनी का, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे कहा तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है, तो कहने लगे नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या, मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
1: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
2: अभिजान।
1: अभिजान बंगला आपको आती
2: नहीं? उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी पुटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
1: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब?
2: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वाज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
1: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
2: हाँ, उन्होंने कहा जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सब ने कोरस में कहा है वहीदा रहमान, तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वाज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है इससे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
3: सेलुलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
1: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के, जब उनका ऑफर आया पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
2: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे, मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए दो दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन।

0: जी रुकुम।
1: हाँ वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
0: मनोज कुमार साहब का नाम आया था। मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम
1: नहीं,
0: करते
1: आई
0: हैं?
1: आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, द बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
0: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
1: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर की सनम,
0: जी।
1: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज़्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो, तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियाँ अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों, मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफ़ी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं आपके ऊपर बहुत सारे गाने, और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फ़र्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अलाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक़ है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा, चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं, तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मज़ा आएगा, ये क्या बात है? ये नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुलीन ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फ़ायदा हुआ। मैंने कहा, लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगे, बोले दो कौन? मैंने कहा, एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगे, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं? वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ। मैंने सोचा गलत कहा कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले, अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: उनका हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से, तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वाज वेरी कॉमिकल, इट वाज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूँ भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग ख़त्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर के सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने, मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज़ हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहाँ थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहाँ नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो 1-2 महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गए वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में? हाँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफ़ी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी? तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओह रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप वहाँ मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
0: वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया है, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
1: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हटकर के भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघरों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ है। इसका नाम है प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील, तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क।

0: में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए, हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, इसके इसका फ़ायदा क्या है।
1: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
0: हाँ जी।
1: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं हमारे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, कार्यक्रम में चर्चा के साथ साथ हम आपको सुनवाएंगे कुछ गीतों को और साथ ही साथ खास जानकारी भी। तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला अब शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी पुण्यतिथि। दोस्तों, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारतीय विज्ञान जगत के उन महान व्यक्तित्वों में से एक थे जिन्होंने विज्ञान को समाज और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बनाया। उनका जन्म 2 अगस्त साल 1861 को हुआ था और वे एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, शिक्षाविद

0: उद्योगपति तथा साथ ही साथ राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने भारतीय रसायन विज्ञान के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ ही साथ स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की, जो भारत की पहली रासायनिक एवं औषधि निर्माण कंपनियों में से एक थी। दोस्तों, आचार्य राय केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारक और प्रेरणादायी शिक्षक भी थे। उन्होंने शिक्षा को जन कल्याण का साधन माना तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने का प्रयास किया। उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री भारतीय विज्ञान परंपरा को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि हमें उनके आदर्शों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वदेशी भावना को स्मरण करने का अवसर प्रदान करती है। आज के युवाओं के लिए उनका जीवन संदेश देता है कि ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी होना चाहिए। दोस्तों, विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: दोस्तों, कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय है योग बने जीवन शैली, स्वास्थ्य बने पहचान। इस विषय पर प्रमोद कुमार सिंह, जो कि एक योग प्रशिक्षक हैं, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय शाहगंज सोनभद्र में, उनसे बातचीत कर रही है रानी राश्री। आज का युवा तेजी से बदलती तकनीक, प्रतिस्पर्धा और व्यस्त जीवन शैली के बीच अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे समय में योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि संतुलित और सफल जीवन का आधार बनकर उभरता है। योग युवाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाता है और एक तरह से देखा जाए तो यह एकाग्रता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा भी देता है, जो युवाओं के शिक्षा, करियर और सामाजिक जीवन में सफलता के लिए बेहद आवश्यक है। आधुनिक युग की भाग दौड़ में यदि युवा योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए तो वे न केवल स्वयं का बेहतर विकास कर सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान अपना दे सकते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमोद कुमार सिंह जी, जो कि योग प्रशिक्षक हैं राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय शाहगंज सोनभद्र में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर।
5: नमस्ते
0: सर। सबसे पहले इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है।
5: मैम, योग का अर्थ होता है जोड़ना, एकाएक होना।
0: जी,
5: व्यक्ति जब योग करता है तो उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों पहलुओं में विकास होता है। योग ये सिखाता है, उसमें यम और नियम होते हैं जिससे कि आप वो दुर्गुणों से भी बचता है और उसका मानसिक स्तर बढ़ता चला जाता है और योग जीवन में बहुत ही अच्छा कारगर होगा।
0: जी बिल्कुल सर। मतलब आपने तो बताया कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है, तो सर ये जीवन के किन किन पहलुओं पर हमारा सहयोग करता है, हमारी मदद करता है?
5: जी, योग से पहले तो हमारा शारीरिक सुधार होता है जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है
0: जी।
5: हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमारा दिमाग एकाग्रचित होने लगता है अब हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं। इसलिए योग में कहा गया है कि योग कर्मशु कौशलम, अपने कार्य को कुशलता पूर्वक से करेंगे तो योग है, और योग चित्त वित्ति निरोधा, अपने चित्त को एकाग्र करेंगे यह भी एक योग है। और इस तरह से आदमी को जीवन में हर परिस्थिति में योग उसमें सहायक होगा।
0: जी बिल्कुल सर। और सर आपकी बात से ये बात सिद्ध भी हो रही है, कहा जाता है करें योग रहे निरोग, ये बात बिल्कुल सार्थक होती है योग से। सर योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित है या मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में भी, तो इस संबंध में आपका अपना क्या दृष्टिकोण है?
5: आज की भागम भाग बड़ी जिंदगी में हमारे युवा और हर व्यक्ति जो है चिंता से अवसाद से ग्रसित होता जा रहा है।
0: जी,
5: इसमें योग की कुछ क्रियाएं होती हैं। अगर वो व्यक्ति जो है भ्रामरी प्राणायाम और मेडिटेशन करता है तो उसका दिमाग सेंट्रलाइज होने लगता है और वो स्थिर होता है, एकाग्र होता है, और किसी भी कार्य को करने में उसका मन लगने लगता है और वो अच्छे से अपने कार्य को संपादित करता है।
0: सर एकाग्रता के लिए जैसे आपने कहा कि भ्रामरी, तो सर ये किस प्रकार करते हैं?
5: मैम, भ्रामरी को करने के लिए पहले अपने दोनों हाथ को खुले करके अंगूठे को कान में
0: जी,
5: और फिंगर से आंखों को बंद करके और कंठ से भौंरे की आवाज करते हुए गुनगुनाहट करेंगे, जैसे इस तरह से दो बार तीन बार करने से दिमाग स्थिर होता रहता है।
0: जैसे कि हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, जो बड़े हैं, वो सब कर सकते हैं
5: इस योग को? सभी लोग कर सकते हैं। 3 वर्ष से जो बच्चा जो ऊपर का हो गया वो कर सकता है, चाहे किसी वर्ग में 3 वर्ष से उसकी आयु ऊपर होनी चाहिए।
0: सर भ्रामरी ये जो आपने बताया, इससे और क्या क्या बेनिफिट है?
5: भ्रामरी प्राणायाम करने से सर दर्द में, माइग्रेन में और डिप्रेशन में ये बहुत ही अच्छा कारगर योग है। जो अवसाद से ग्रसित हैं अगर वो व्यक्ति करते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में हैं अगर वो इस क्षेत्र को करते हैं, भ्रामरी करते हैं, पढ़ने से पहले यदि वो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उसमें निश्चित ही एकाग्रता आती है और उनका पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है और वो अच्छा विकास करेंगे।
0: बिल्कुल, मन एकाग्र होगा तो अपने काम को, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो ऑफिस में काम करें, वो अपने काम को बहुत फोकस तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। सर अभी का जैसे समय जो चल रहा है, तो ऐसे में बच्चे थोड़ा सा योग से दूर भागते हैं, लेकिन अगर ऐसे में कोई युवा पहली बार योग शुरू करना चाहता है तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, युवा किस प्रकार पहल कर सकते हैं?
5: आज का युवा को सबसे पहले अगर जहाँ पर है उसके बगल अगल बगल में कोई ग्राउंड है जहाँ साफ सुथरा है, कोई फील्ड है, कोई पार्क है, वहाँ करे, और जहाँ कुछ हरियाली हो जिससे मन देख करके प्रसन्न चित्त हो। अगर कहीं जो सिटी में है अगर उसके यहाँ ऐसी चीजें उपलब्ध न है तो अपने वो छत के ऊपर जा करके चटाई या दरी बिछा करके सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, तीनों में से कोई अवस्था में बैठ करके, सुखासन का मीन्स होता है पलथी मार करके बैठ जाएगा, वज्रासन का मतलब होता है पैरों को मुड़ करके बैठ जाएगा, पद्मासन का मतलब होता है कि एक पैरों को अपने एक दूसरे पर चढ़ा करके बैठ करके, वर्टिब्रा को रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी वो योग करेगा तो उसको लाभदायक और अच्छा लगेगा।
0: जो नए बच्चे हैं जो शुरू कर रहे हैं, उनका समय क्या होना चाहिए शुरू करने का और कितने देर वो कर सकते हैं?
5: सुबह में बच्चे जो है फ्रेश होकर के फील्ड में जाएं या किसी पार्क में जाएं, 30 मिनट से 45 मिनट वो योग की क्रियाओं को करें, उनको अच्छा लाभ होगा। शुरू में जो है वो बच्चा अगर युवा है तो सूक्ष्म व्यायाम
0: जी
5: और प्राणायाम और जॉगिंग अपने पैरों को ऊपर नीचे करके वो करेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कठिन योग किसी योगाचार्य के निर्देशन में ही करना चाहिए, नहीं तो फायदे के जगह पर नुकसान होगा।
0: बिल्कुल, अगर वो शुरू कर रहे हैं तो भी उन्हें योगाचार्य से सलाह लेनी चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए कि किस किस प्रकार से वो शुरू करें और कैसे सही दिशा में वो योग को करें, क्योंकि जरा सा भी अगर वो गलत करेंगे तो इसके नुकसान होंगे।
5: जी
0: जी सर, कुछ ऐसे योगाभ्यास और प्राणायाम बताएं जो नियमित रूप से दिनचर्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो शामिल कर सकते हैं।
5: सूक्ष्म व्यायाम, पहले अपने हाथों को आगे पीछे करके, मुट्ठी को बंद करके खोल करके, कंधों को जो है हिला करके, पैरों को ऊपर नीचे करके, गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे कर करके पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद कुछ योगासन बैठ करके करने वाले करेंगे, कुछ पेट के बल, कुछ पीठ के बल और खड़े

0: खड़े जो है वो ताड़ासन जैसी क्रियाओं को आसानी कर सकते हैं। और प्राणायाम में जो है भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसको लाभ होगा। अनुलोम विलोम करने से ब्रेन में या ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, जिससे कि व्यक्ति का जो है ब्लड प्यूरिफाई होता चला जाता है और स्वस्थ होता चला जाता है। और स्वस्थ होगा तो उसका जो है माइंड कंसंट्रेट होता जाएगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर हम पर्टिकुलर कपालभाति की बात करते हैं
1: जी,
0: तो व्यक्ति को किसी भी अवस्था में, मैंने बताया था कौन कौन अवस्था में बैठ करके करना चाहिए
1: जी,
0: और आराम से बैठ करके अपनी रीढ़ की हड्डी को, वर्टिब्रा को सीधा करके और करना चाहिए
1: जी,
0: और कम से कम 10 मिनट तक कपालभाति किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीपी का पेशेंट हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो वो कम समय करें, 10 से 15 बार ही करके बंद करें।
1: मतलब कि कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसे कि हमें थोड़ी सी सावधानी का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार योग का एक अहम हिस्सा है, तो सूर्य नमस्कार करते वक्त या उसे सीखने के टाइम या कितने बार हमें करना चाहिए, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: युवाओं के लिए सूर्य नमस्कार इतनी अच्छा है कि उसकी कोई कल्पना और विवरण नहीं किया जा सकता है
1: जी।
0: उसमें 12 अवस्थाएं होती हैं और 3 से 5 बार शुरू के समय में 3 से 5 बार करना चाहिए, और इसके लिए भी किसी योगाचार्य के निर्देशन में ही शुरू करने चाहिए
1: जी। सूर्य नमस्कार शरीर के हर एक हिस्से को प्रभावित,
0: हर पार्ट को प्रभावित करता है, जैसे लीवर को, किडनी को, हार्ट को, लेडीज हैं तो ओवरीज को, इंटेस्टाइन को, सबको प्रभावित करता है। और एक यही एक ऐसा योग है जिसके करने से शरीर के हर पार्ट का, हर अंग का व्यायाम एक साथ होता है
1: जी। बिल्कुल। एक आप अंदरूनी तौर पे भी स्वस्थ होते हैं और बाह्य रूप में भी।
0: जी जी।
1: सर, जैसा कि समय चल रहा है, लोग मोबाइल देखते हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उनके गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द की एक समस्या बनी रहती है, तो ऐसे में किस तरह से हम योग से अपना जुड़ाव बना सकते हैं, किस तरह से जुड़ सकते हैं योग से?
0: जब वो मोबाइल देखता है या पढ़ता है बच्चा
1: जी,
0: तो उसकी गर्दन झुकी होती है, तो उनकी वर्टिब्राओं पर दबाव होता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल की समस्या उनको होने लगती है
1: जी।
0: सर्वाइकल बीमारी गर्दन की ही बीमारी है
1: जी।
0: अगर ये प्रॉब्लम यदि आ रही है तो व्यक्ति को जो है अपने गर्दन को दाहिने बाएं आगे पीछे करेगा, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको आराम मिल जाएगा, लेकिन योग करना पड़ेगा
1: जी।
0: बड़े लोग हैं, उनके पीठ में दर्द होने लगती है
1: जी, घर का कार्य करते
0: घर का कार्य करने से, कुर्सी पे बैठने से या घरेलू कार्य करने से, तो ऐसे लोगों के लिए हमें पहले तो सूक्ष्म व्यायाम में ही गर्दन का व्यायाम करना चाहिए, हाथों का व्यायाम करना चाहिए, कोई साफ फर्श हो तो उस पर लेट करके और मर्कटासन की अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि वो क्या अवस्था है, पैर एक, दोनों पैर को मोड़ करके एक तरफ होंगे, गर्दन एक तरफ होगी। अगर इस चीज को 5 बार 7 बार यदि किया जाए, अगर पर्टन किया जाए, अगर जो व्यक्ति मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता है और मोटरसाइकिल से प्रतिदिन उसकी आवागमन है, तो भी उसको करना चाहिए, उसकी वर्टिब्रा जो अच्छी हो जाएंगी और उसका शरीर लचीलापन रहेगा, और जब शरीर में लचीलापन रहेगा वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और हमारे श्रोता सुन भी रहे हैं आपको, और वाकई वो अपने जीवन में योग को इस तरीके से शामिल करेंगे कि वो अंदरूनी और बाह्य दोनों तरीके से स्वस्थ रहें। सर, अगला प्रश्न ये है कि आज की जो व्यस्त जीवन शैली है, इसमें आप बच्चों में अक्सर अवसाद, क्रोध और चिंता, ये सब भाव और नकारात्मक भावनाएं अक्सर उनमें देखी जाती है, तो ऐसे में योग से जुड़कर वो अपने स्वभाव में संयम कैसे स्थापित कर सकते हैं?
0: हाँ, ये भी प्रश्न आपका आधुनिक जीवन में बहुत ही सामने दिख रहा है
1: जी।
0: जी, बच्चे हों, युवा हों, उनको अवसाद होता जा रहा है, शाइजोफ्रेनिया डेवलप हो रही है, ऐसे में अगर वो व्यक्ति योग करता है, उसका पहले नियमित दिनचर्या बनती जाएगी और वो मेडिटेशन करेगा, भ्रामरी प्राणायाम करेगा और शवासन करेगा, तो उसको जो है लाभ होगा और उसका माइंड कंसंट्रेट होता जाएगा और वो अच्छे से धीरे धीरे धीरे धीरे अपने कार्यों को अच्छे से संपादित करने में सफल होगा।
1: सर, मेडिटेशन इस फील्ड में किस प्रकार सहायक हो सकता है?
0: जी, मेडिटेशन मीन्स होता है एकाग्रता
1: जी।
0: एकाग्र होने के लिए किसी एक शांत और सही जगह पर जाकर के साफ सुथरे जगह बैठिए, सूर्य की तरफ मुंह कर लीजिए, पलथी मार करके बैठ जाइए और अपने हाथ को, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे अपने गोद में कर करके, आंखों को बंद करके
1: जी
0: आराम से रिलैक्स होकर के

0: और ये महसूस करिए कि सूर्य किस तरह से धीरे धीरे निकल रहा है, वैसे उसकी ऊर्जा आप में प्रवेश होती चली जाएगी, आपका दिमाग शांत होता चला जाएगा और आप अपने को रिलैक्स महसूस करेंगे।
1: बिल्कुल सर। और सर, विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ और जागरूक युवाओं की क्या भूमिका है, और इसमें योग किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है?
0: जैसा कि पहले मैं बताया
1: जी
0: कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, एकाएक होना। तो योग करने से जो है व्यक्ति का जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक
1: जी
0: चारों पहलुओं में वो स्वस्थ होता चला जाता है। जब वो स्वस्थ होगा तो पहले हम ये सोचेंगे पहले मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ हो, और जब ये स्वस्थ होंगे, युवा स्वस्थ होंगे, तो देश की किसी भी कार्य को करने में उनका जो दिन अच्छे से मन लगेगा, और जब मन उनका अच्छे से लगेगा उस कार्य को अच्छे से संपादित करेंगे, और संपादित करेंगे तो निश्चित ही जो है देश का, भविष्य का विकास होगा। मेरे घर का पहले विकास होगा,
1: जी
0: मेरे गांव का विकास होगा, मेरे मोहल्ले का विकास होगा, मेरे जिला का विकास होगा, मेरे प्रदेश का विकास होगा, तब
1: जी
0: जाकर के मेरे देश का
1: देश
0: भी
1: का
0: विकास
1: विकास
0: होगा।
1: होगा। बिल्कुल सर, शुरुआत हमें खुद से पहले करनी है, अपने घर से करनी है। सारे लोग जब इसी चीज को अपने घर से जब शुरू करेंगे तो वाकई देश का विकास संभव
0: सुनिश्चित
1: है।
0: है।
1: जी बिल्कुल सर। अंत में आकाशवाणी के माध्यम से युवाओं के लिए आपका प्रेरणादायक संदेश क्या होगा?
0: मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि वे अपनी आलस्य को त्याग करके सुबह घर से निकल करके किसी फील्ड में या किसी पार्क में जा करके योग करें, ध्यान करें, जिससे उनका शरीर लचीला हो, स्वस्थ हो। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जैसे ही वो स्वस्थ होंगे देश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे, इस प्रकार से योग उनके जीवन के हर पहलू में आने वाला है।
1: बिल्कुल सर, अच्छी बात कही कि योग के माध्यम से हम क्या लाभ ले सकते हैं, और हमारे श्रोता सुन भी रहे हैं, वो अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में इस चीज को शामिल करेंगे, योग से जुड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। अक्सर देखा गया है कि समय की कमी लोगों में पाई जाती है, अपने लिए समय नहीं है उनके पास, तो ऐसे में ऑफिस टाइम में कैसे वो योग से जुड़ सकते हैं?
0: जी मैम, आज के युवा जनरेशन या जो है जो कार्य क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं,
1: जी
0: हकीकत है कि उनके पास समय नहीं है। जैसे कोई कंप्यूटर पर व्यक्ति रह रहा है तो उसको 45 से 40 मिनट के बीच जैसे समय होता है उसको चेयर पर से उठ करके अपने बॉडी को जो है दाहिने बाएं कर लेना चाहिए, पलकों को बार बार झपकाना चाहिए, क्योंकि जब पलकों को झपकाएंगे तो उनकी आंख जो है रिलैक्स होगी
1: जी
0: और उनकी वर्टिब्रा लचीलापन बनी रहेंगी। एक कंटिन्यू बैठने से वर्टिब्रा में लचीलापन समाप्त होगा, आंख में जो है तमाम तरह की प्रॉब्लम आती हैं, और उनको जो है ये समस्या उनके ब्रेन पर पड़ता है और वो चिड़चिड़ापन होने लगते हैं। यही कारण होता है कि ज्यादा देर तक बैठने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल, अगर आप सुबह समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऑफिस टाइम में भी आप अपने लिए ये काम करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: जी, मैं पूरे देश के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। आप सभी लोग अपने परिवार से, घर से निकलें और योग करें, जहां तक हो सके, जहां आपको सुविधा मिले, जहां योग हो रहा है वहां पर जाएं और योग करें। और इस चीज योग को आप केवल 21 जून तक सीमित न रखें, अपने जीवन में अपने लिए 40 मिनट का समय निकालिए और प्रतिदिन योग करिए। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने कार्य को अच्छे से करेंगे।
1: बिल्कुल, और 21 जून का जो समय निर्धारित किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय, मतलब हमारे देश में तो ये चीज प्रचलित है ही कि योग करें, लेकिन अब दुनिया ने भी माना है कि योग कितना फायदेमंद है हमारे लिए। इस खास बातचीत के माध्यम से, योग के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में हमसे बातचीत कर रहे थे प्रमोद कुमार सिंह, जो कि योग प्रशिक्षक हैं और राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय शाहगंज सोनभद्र में कार्यरत हैं। सर, इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप भेंट वार्ता सुन रहे थे, विषय था योग बने जीवन शैली, स्वास्थ्य बने पहचान। इस विषय पर प्रमोद कुमार सिंह, जो कि योग प्रशिक्षक हैं, इनसे बातचीत कर रही थी रानी राष्ट्रीय।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घट

0: बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हमारी जनगणना हमारा विकास।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: दोस्तों, कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं देश बंधु चितरंजन दास जी के बारे में, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। दोस्तों, देश बंधु चितरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, प्रख्यात वकील, समाजसेवी और राष्ट्रवादी नेता थे। इनका जन्म 5 नवंबर साल 1870 को बंगाल में हुआ था। दोस्तों, वे अपने त्याग, राष्ट्र प्रेम और जन सेवा के कारण देश बंधु अर्थात देश का मित्र कहलाए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। दोस्तों, दास जी ने एक सफल वकील के रूप में ख्याति प्राप्त की, किंतु देश हित को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने अपना अधिकांश समय और संसाधन स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा महात्मा गांधी जी के विचारों का समर्थन भी किया। बाद में उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका उद्देश्य भारतीयों को विधायी संस्थाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन का प्रभावी विरोध करने का अवसर प्रदान करना था। दोस्तों, देश बंधु दास सामाजिक समरसता, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। दोस्तों, उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और त्याग की भावना ने स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया। दोस्तों, 16 जून साल 1925 को उनका निधन हुआ, किंतु उनके विचार और आदर्श आज भी हमारे बीच प्रासंगिक हैं। उनकी पुण्यतिथि हमें यह स्मरण कराती है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए निस्वार्थ सेवा, त्याग और दृढ़ संकल्प का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश बंधु चितरंजन दास जी का जीवन देशभक्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व और जन सेवा की प्रेरणा देता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव मार्गदर्शक बना रहेगा। दोस्तों, कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के बारे में, जो कि प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है, जो अपने परिवारों के बेहतर जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए अपने घरों से दूर रहकर कार्य करते हैं तथा अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से अपने परिवारों को भेजते हैं। दोस्तों, इस धनराशि को पारिवारिक प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि परिवारों के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और समर्पण का प्रतीक भी होती है। दोस्तों, विश्व के अनेक देशों में लाखों परिवार अपने सदस्यों द्वारा भेजी गई धनराशि पर निर्भर रहते हैं और यह सहायता बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, आवास और छोटे व्यवसायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में भी रेमिटेंस का यानी कि पारिवारिक प्रेषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है तथा गरीबी कम करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस का उद्देश्य लोगों को यह समझाना भी है कि प्रवासी श्रमिक केवल अपने परिवारों का ही नहीं, बल्कि अपने मूल देश और कार्यस्थल देश दोनों के विकास में अपना योगदान देते हैं। उनके परिश्रम से अनेक परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बनते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यह दिवस वित्तीय समावेशन, सुरक्षित और सुलभ धन हस्तांतरण सेवाओं तथा प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल देता है। दोस्तों, आज डिजिटल तकनीक के विकास ने धन भेजने की प्रक्रिया को पहले से बहुत अधिक

त्याग और अथक परिश्रम को नमन करने का अवसर प्रदान करता है तथा समाज को उनके योगदान के प्रति अधिक संवेदनशील और कृतज्ञ बनने की प्रेरणा देता है।

चल दे। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी का विचार है, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। दोस्तों, ये कथन अपने शब्दों के साथ बिल्कुल सत्य साबित है और इस तरह के व्यक्तित्व को हमें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम युववाणी से अपनी रेडियो दोस्त रानी राष्ट्रीय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता दैनिक कार्यक्रम युवाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

सब बहिन लोगन के जीरा बहिन का राम राम। और बहिन लोग बतावें आपन हाल चाल। देखा बहन लोगन, जब बहुत दिन बाद जब आप लोगन से भेंट मुलाकात होला ना, तो इतना बढ़िया लगा ला कि हम बता नहीं सकी, बयान नहीं कर सकी। लेकिन जब मिलने के बाद सबसे पहले तो देखा हाल चाल पूछी ला, ओकरे बाद का यही हम जाने चाहबला कि बहन लोगन ठीक ठाक है न। वैसे तो देखा हमन के तो देखा यह उम्मीद रहला कि आप सभी लोग कुशल मंगल सुहेन। और बहन देखा एक बात और है कि अपने घर परिवार में जब सब कुछ ठीक ठाक रहेला ना, तो हमन के घरे से लेके बहरे तक के जो काम धंधा में मन लगेला, ओकरे साथे साथे देखा सबकर बातचीत भी बढ़िया लगेला। और संगे संगे जो जानकारी भी हम लोग सुनीला, वो देखा उसे हमन के बहुत कुछ सीखे के भी मिलेला। तो आज देखा हमन के अपन बातचीत के शुरुआत भी परिवार से ही हुई, कहे से कि आज देखा अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस होला और एके प्रतिवर्ष 16 जून के मनावल जाला। और ये दुनिया भर के प्रवासी श्रमिक

महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान की मान्यता के रूप में देखल जाला, जे अपने घर परिवार के भरण पोषण और आर्थिक स्थिति के सुधारे के लिए पैसा भेजेलन। और देखा ये दिवस के शुरुआत के जो पहल रहल वो पहली बार देखा 2008 में भइल रहल अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD द्वारा कैल गेल रहल। और देखा एकर महत्व इहे बा कि परिवार प्रेषण प्राप्तकर्ता परिवार के लिए भोजन स्वास्थ्य सेवा शिक्षा आवास तक पहुंच के बनावे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। और बहन लोगन देखा इ दिवस का मुख्य उद्देश्य भी यह बा कि प्रवासियों द्वारा जोन परिवार के भरण पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य और स्थानीय समुदाय और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जोन भेजल जाला वो आए देखा प्रेषण के महत्व के उजागर करला। और देखा साथ ही साथ एक चीज और आपके बता दें कि जोन महारानी लक्ष्मीबाई का जोन पुण्यतिथि बाद जेके हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाईला वो देखा प्रतिवर्ष 18 जून के होला। और झांसी की रानी जोन लक्ष्मीबाई रहलिन देखा ग्वालियर के युद्ध में अंग्रेजन से लड़ते हुए जोन वीर गति के प्राप्त भइलिन तो कहल गल कि वो उनका सोच यही था कि जब अंग्रेज बोलन कि हम लोग जो है कि मतलब लड़ाई छिड़े के बाद तो ये बोल महारानी लक्ष्मीबाई बोलिन कि हम जो है कि अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसके खातिर जो है कि डट के सामना भी कैलिन अंग्रेजन से। और यहाँ तक कि कल गल कि ग्वालियर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए 18 जून के 1858 में कोटा के सराय ग्वालियर के पास अपने प्राण का आहुति दे देलिन। और बहन देखा महारानी लक्ष्मीबाई जोन एक साहसी रानी रहलिन यही लिए देखा हमन के भी लोग रानीबाई लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेवे के चाहिए और सीखे के चाहिए कि हम लोग भी ऐसे ही साहसी और ताकतवर बनी। और देखा ये तभी संभव हुई जब हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाए और अपन स्वास्थ्य ठीक रखे के खातिर खान पान के साथ साथ योग बहुत जरूरी है। और हमार देखा आज कहे का मतलब ये बा कि योग स्वस्थ स्वास्थ्य का राज बा और योग संपूर्ण स्वास्थ्य का कुंजी भी है। और जैसे शारीरिक मजबूती मानसिक शांति और प्राण शक्ति का संतुलन बनावेला। और यही लिए प्राचीन ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मानेलन कि नियमित अभ्यास से लचीलापन बढ़ाला तनाव दूर होला हृदय स्वस्थ रहेला और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी माने सही रहेला। और हमन के जो ना कि योग के अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बनावे के चाहिए जिससे हम लोगन के स्वास्थ्य का माने संपूर्ण विकास हो सके और मन और तन जो है दोनों चुस्त और दुरुस्त रहे। बहन लोगन देखा बात बत कही तो हमन के आगे होते रहे लेकिन जोन आज हमन के जानकारी भी शामिल के लिए कि आप लोग भी सुनिए नाम भी सुनो वो देखा परिवार से ही संबंधित कहे का मतलब ये है कि पारिवारिक जीवन की समस्याओं का समाधान एक बारे में श्रीमती कविता राय जोन गृहिणी हैं उनसे अपन बहन बता सब बहन बातचीत के लिए एक सुनल जाए। लेकिन उससे पहले जो है ना कि कल गल ना कि मन फेर हो जाला तो तनी मन फरार हो जाला तो देखा जोन आज हम लोग मनसायन सुनल जी उमा स्मिता मिश्रा जे कहरवा सुनावत हैं तो चला सुनल जाए कहरवा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी

0: पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं नमस्कार।
3: बहन लोगन देखा ये रहला संदेश, संदेश के बाद देखा जौन अब जानकारी सुनने वाला बात बताओ तलिए कि पारिवारिक जीवन की समस्याओं का समाधान एकरे बारे में श्रीमती कविता राय जौन गृहिणी है उनसे अपन बता सब इन बातचीत का कैले हैं, चला मिल के सुनल जाए सब लोग।
2: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, परिवार समाज की एक छोटी इकाई के रूप में मानी जाती है। परिवार के सदस्यों में जब तक त्याग, मोह और प्यार का भाव बना रहता है तब तक उसकी सुदृढ़ एकता को आंच नहीं आने पाती। परिवार में रहने वाला प्रत्येक सदस्य कर्तव्यों को प्रधान और अधिकारों को गौण मान अपने से पहले दूसरों की सुख सुविधा को प्राथमिकता दे तो आपस में मनमुटाव चाहे अलगाव की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। परंतु कब किससे कहां ऐसी बातें हो जाती हैं कि परिवार में खटास उत्पन्न होने के साथ साथ सब कुछ छूटने और टूटने लगता है। परिवारों में समस्याएं आखिर उत्पन्न कैसे हो जाती हैं और उसका समाधान कैसे होना चाहिए ताकि परिवार का मूल रूप हमेशा बना रहे। बात करेंगे इस बारे में श्रीमती कविता राय जी से, जो कि एक कुशल गृहिणी की श्रेणी में गिनी जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं। कविता राय जी, आपका सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार संजय जी।
2: नमस्कार। और आज देखे परिवार जैसे संवेदनशील विषय पर कुछ चर्चा करेंगे, आपकी राय जानेंगे, पर सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कविता जी, और आप अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताएं।
4: जी मैं एक गृहिणी हूँ और 86 में मेरी शादी हो गई थी जी। मेरे सास ससुर भी इसी ओबरा में थे, मेरे ससुर एक्सियन थे और मेरे पिताजी पुलिस में थे
2: जी।
4: तो शादी तो इसी ओबरा में एक साथ ही हो गई, कहीं और जाना नहीं पड़ा।
2: मेरी शादी मतलब
4: कॉलोनी में ही थे हम दोनों।
2: अच्छा, मतलब और सामने सामने
4: ओबरा में बीता, सनसी से लेके मैं आज तक ओबरा में ही
2: हूँ जी। जी
4: कहीं जाना भी नहीं पड़ा मेरे पिताजी को लड़का ढूंढने भी और ओबरा में लड़का मिल गया और शादी भी इन्होंने कर दी। और उसके बाद धीरे धीरे मैं जब अपन परिवार में, उसमें मेरा परिवार काफी बड़ा था
2: जी।
4: मेरे सास जी के साथ मेरे चाचा ससुर, मेरे चचिया सास, यहाँ तक कि मामा सास, मामिया सास, मामा ससुर जी,
2: मतलब एक संयुक्त परिवार,
4: एक संयुक्त परिवार मेरे परिवार में था जब मैं शादी करके आई थी। तो
2: जी, जी।
4: सभी लोग एक साथ ही रहते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय होता गया लोग अपने कामों में व्यस्त होते चले गए। चाचा ससुर जी का ट्रांसफर अनपढ़ा हो गया, मामा ससुर जी अपने में बिजी हो गए और मौसिया सास ससुर जी भी अपने अपने व्यस्तता में लग गए। तो धीरे धीरे फिर करके छोटा परिवार होता चला गया। जैसे मैं रही और मेरी एक ननद थी बस, मेरे दौरान जेठान तो भी नहीं थी लेकिन हाँ चचिया सास की थी लोग।
2: अच्छा।
4: तो उन लोग से भी आना जाना लगा ही रहता था। इसी तरह से अब क्या है, कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, सास ससुर भी साथ में रहे। अब 2 साल हुआ सास ससुर भी मेरे स्वर्गवासी हो गए हैं
2: जी।
4: तो इस समय
2: तो जीवन की कटु सच्चाई है कि जो आया है उसको जाना ही
4: जी जी।
2: कविता जी कहते हैं कि परिवार समाज की एक छोटी इकाई है, परिवार में संयुक्त परिवार और एकल परिवार होता है
4: जी।
2: पहले के लोग देखें मिलजुल कर तमाम रिश्ते नाते, जैसे अभी आपने बताया दादा दादी, मामा मामी, भाई बहन, ननद भाभी, नाती पोते, मैंने सबको जोड़ करके चलाते थे
4: जी।
2: पर जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता गया परिवारों में खंडन होता गया और आज की ये हालत है कि बस हम दो और हमारे एक या दो, फिर भी वो परिवार खुश नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़े होना आम बात हो गई है। तो ये होने की वजह आप क्या मानते हैं कविता जी?
4: देखिए संजय जी, हमारी भारतीय संस्कृति में पूरे विश्व को ही परिवार माना गया है
2: जी।
4: अक्सर हम लोग सुनते भी हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम,
2: बिल्कुल
4: जुड़ना है तो पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं और टूटना है तो व्यक्ति अपनी परछाई से भी डर जाता है।
2: बिल्कुल,
4: ये हमारी खुद की सोच निर्भर करती है कि हम सबको साथ लेकर चले या खुद को भी नफरत करने लगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
4: अपनी सोच पर निर्भर करता है। हमने महसूस किया है संजू जी कि जीवन शैली में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है।
2: बिल्कुल,
4: जिस परिवर्तन को स्वाभाविक तौर पर स्वीकार किया जाता है और करना चाहिए, वहाँ सुख शांति है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे मेरी दादी या नानी का जीवन था वैसा मेरा या मेरे सास का नहीं
2: जी।
4: फिर हम अपनी बेटी या बेटो या बहू या दामाद का जीवन खुद कैसा, मतलब ऐसा क्यों चाहते हैं?
2: ये बात तो बिल्कुल सही है जी। कविता जी देखिए, एक आम ये समस्या है सास बहू का आपस में सामंजस्य
4: जी।
2: अगर दोनों का तालमेल ठीक बना तो ठीक, नहीं तो बात बात पर ताने मारना, छींटा कसी करना
4: जी, जी।
2: एक दूसरे के परिवारों पर दोष मढ़ना, कमियां निकालना जैसे बातें होने लगती
4: जी, जी जी।
2: तो आखिर गलती किससे होती है और कहां होती है और इसका समाधान क्या होना चाहिए?
4: देखिए जी, अब क्या किताबों की बातें हैं, समान तौर पर नहीं बल्कि हजार परिवारों में कि दो ही परिवार ऐसे होंगे जो संयुक्त परिवार है
2: जी।
4: और लोग एक छत के नीचे चूल्हे बनाकर रोटी खा रहे हैं
2: जी।
4: एक मतलब एकल परिवार को भी हम बुरा नहीं मानते हैं।
2: अच्छा।
4: परिवार में बुजुर्ग या दिव्यांग या सहाय, इन लोग अनदेखे भी नहीं

0: करना चाहिए इनके साथ, इनका तो
1: भाई
0: आप पूरे देख रेख तो बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: तो सबको मिलकर इनको देखना चाहिए।
1: और
0: जो पहले का परिवार कोई व्यक्ति कमाता था और सभी लोग खाते थे,
1: बिल्कुल एक मुखिया घर का कमाता था और घर के जितने भी 8-10 लोग रहते थे सभी लोग खाते थे और सुकून से रहते थे।
0: अब परिवार का प्राय हर सदस्य कमाता है फिर भी सुख शांति नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने जी।
0: इसकी वजह पर हमें जानना होगा जी। देखिए संजू जी, हमने अपने को खुद की बुनी हुई जाल में फंसा लिया। जैसे कि जरूरतें तो 3 है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, इसके अलावा तो सभी चीजें विलासिता की हैं। हमने तो विलासिता की चीजों को भी अनिवार्य आवश्यकता में जोड़ लिया है। इन बातों को चर्चा इसलिए की जा रही है जी कि हम अपनी जरूरतों को जितना कम रखेंगे उतनी ही सुख शांति होगी। जरूरतों को बढ़ाएंगे तो परिवार में तनाव स्वाभाविक है
1: जी। बिल्कुल। अच्छा देखें कविता जी, कि घर में कई बार काम को लेकर भी परिवार के लोगों में मनमुटाव होने लगते हैं। अगर परिवार में 2-4 बहुएं हैं तो सब एक दूसरे को देख करके काम करने से अपना जी चुराती हैं और बहाने बनाने का प्रयास करती हैं। सोचती हैं कि काम बस हम ही क्यों करें, और भी तो सब हैं वो करें।
0: जी जी।
1: यहाँ एक दूसरे को देखने के चक्कर में काम तो समय से हो नहीं पाता, उल्टा झगड़े की वजह बनती रहती है।
0: जी जी।
1: तो इनके बीच की ऐसी सोच मिटे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
0: जी देखिए संजू जी, घर में जब 4 बहुएं हैं
1: जी,
0: तो चारों को मिलकर ही अपने काम को सुलटाना होगा। अब जैसे कि अब कोई एक सुबह का काम देख ले घर में, किचन में कोई सब्जी काट दे, कोई चावल है उसको देख ले, कोई आटा गूंथ ले, तो फिर तकरार होगा ही नहीं।
1: होगा नहीं, बिल्कुल बात सही है कि मतलब घर में अगर 4 बहुएं, कोई सुबह से लगी है कर रही है तो वो भी बेचारी थक जाती है,
0: थकी जाती
1: और एक बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा ये गलत तो लगता है।
0: तो 4 जहां, तो चारों को मिलकर ही घर को संभालना पड़ेगा। और उसमें तो हर चीज के लिए अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे कि मैं इधर बैठ गई उधर बैठ गई और उधर टाइम पास करेंगे तो दूसरी बहू को तो बुरा लगेगा ही।
1: बिल्कुल।
0: तो सबको घर के अंदर मिलके ही सब पूरे खाने का खाना बनाए, अपने घर के काम को अगर देखती हैं तो बहुत ही अच्छा है, तब वहाँ पर लड़ाई झगड़े की कोई बात उठेगी ही नहीं। अगर समस्या होती है तो घर के मुखिया है ही है, सबको बैठा के सबका तालमेल बैठाए, सबको समझाए कैसे रहना है क्या करना है। भाई परिवार तो परिवार है, जहाँ मिलके हम रहेंगे वहाँ सबसे अच्छी मजबूती है।
1: बिल्कुल। और जो घर की सासू माँ है या फिर जो घर के जैसे जेठानी, कभी कभी कई परिवारों में सास नहीं होती है, तो जो घर के सबसे बड़ी जेठानी कह लें वो भी देखें समझदारी का परिचय
0: दें, समझदारी के परिचय
1: अपने से छोटे लोगों को
0: जी उनको करना ही चाहिए। अब मैं तो बड़ी हूँ, 3 ऐसा है कि मैं अहंकार में रहूँ कि मैं तो बड़ी हूँ, मैं जेठान हूँ, मैं क्यों उसमें जाऊँ करने, उनको भी साथ में लेके हर चीज को चलना चाहिए, तभी वो परिवार इकट्ठा रह सकता है और चल सकता है।
1: जी जी बिल्कुल। अच्छा देखें बच्चों की वजह से भी कई बार विवाद खड़ा हो जाता है परिवारों में, उनके शिक्षा व संस्कार को लेकर के घर के बड़े लोग आपस में रंजिशें खड़ा कर लेते हैं, जबकि देखें बच्चे पल में झगड़ा किए और पल में ही एक साथ फिर हो जाते हैं।
0: जी जी।
1: पर घर के जो बड़े लोग हैं उनमें क्रोध, द्वेष और घृणा जैसी गतिविधियां हावी होने लगती हैं।
0: जी जी।
1: तो इसे कैसे मिटाया जाए कविता जी?
0: देखिए जब बच्चों के समझाने के बजाय उन्हें जो सह देते हैं
1: जी,
0: गलतियां माँ बाप यही करते हैं। देखिए जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब बड़े हैं, गलती करेंगे तो बच्चे छोटे करेंगे ही पीछे पीछे, तो बड़े को क्रोध, द्वेष, घृणा ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए बच्चों के सामने। जो चीज है उनको समझा के रखना चाहिए कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। घर में अगर लड़ाइयाँ बच्चों में होती है तो ये नहीं है कि हाँ मेरा बच्चा गलती नहीं कर रहा वही बच्चा गलती कर रहा है, उसको भी उसको समझाना चाहिए कि नहीं तुम भी गलती किए हो और वो भी गलत किया, तो उसको भी समझाना चाहिए भाई मेरा बच्चा करके नहीं गलती किया और दूसरे बच्चे को अपराध दोषी बनाना, ये भी सबसे गलत बात है। तो आप सब बच्चों को मिलाकर समझाइए, समझिए कि हाँ बड़ा समझा रहा है तो वे सब बच्चे समझेंगे ही। और ऊपर से मोबाइल ऐसी चीज है कि आजकल मोबाइल के चक्कर बच्चे और ज्यादा उद्वेलित हो रहे हैं। अगर उनके हाथ में मोबाइल ना दिया तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, हमेशा उनके हाथ में मोबाइल रहता है, अगर 1-2 मिनट के लिए आप ले लेती हैं तो परेशान हो जाते हैं।
1: बिल्कुल। पहले के देखे बच्चे होते थे कि गिल्ली डंडा खेलते थे, खो खो है, कबड्डी है, तो उनकी संगति जो है कि आपस में लोगों के बीच में रहती थी बच्चों में। आज ये आजकल जो मोबाइल है जो थोड़ी देर के लिए हमको सारी समस्याओं का निदान मिल सकता है मोबाइल से, लेकिन हम 24 घंटे दिन भर अगर मोबाइल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है
0: बच्चे चिड़चिड़ी हुई
1: तो चिड़चिड़ापन तो होना स्वाभाविक है
0: जी। इसलिए आप अपने बच्चों को मोबाइल से तो एकदम दूर रखिए,
1: जितना ही
0: रखें जरूरत की।
1: ऑनलाइन पढ़ाइयां
0: होने लगी हैं और वो मोबाइल के अंदर इतने सारे ऐसे ऐसे गेम डाउनलोड बच्चे कर लेते हैं जिसको देख के खेलने से उनके मन के ऊपर काफी कुछ गलत प्रभाव पड़ता है।
1: जी जी।
2: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के विकास के, जन कल्याण के।
4: बहन लोगन दिखाई रहे संदेश, संदेश से पहले जोन पारिवारिक जीवन की समस्याओं का समाधान एक बारे में श्रीमती कविता राय जोन गृहिणी रही ना अपन बता सब इन फरिया फरिया के बतियली ना। और निश्चित रूप से जो ना कि जेकरे घर में थोड़ा बहुत देखा समस्या सबके घर में होला, लेकिन समाधान भी आपके परिवार में रहला। और परिवार में अगर एकजुट होके अगर समस्या का समाधान कर लें तो जीवन खुशहाल हो जाला। लेकिन कुछ घर में जो कलह होला वो समझा कि जिंदगी बर्बाद करे वाली बात होला। तो हम तो यह कब कि अब यही से सीख लें लोग, और परिवार में अगर मन मोटाव हो तो मिलजुल के रहें। तो देखा अब इनके जो ना कि झूरे झूरे धनबाद न दे के जो ना कि एक मन मनसायन के साथ धनबाद देवल जाए कविता बहन के। तो देखा स्मिता मिश्रा के गावल एक और कहरवा हो, चला बिना देर के लिए सुन लेवल जाए।

बहन लोगन देखाई स्मिता मिश्रा के गावल जो ना कि कहरवा रहल और गीत सुन के मन एकदम फरार हो गेल। तो साथे साथे आपके बता दें कि जौन गर्मी चलत होला एमे अपने के अगर बचाव करे के बा तो नींबू और पुदीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होला। और देखा अगर नींबू का सेवन करल जाए तो पुदीना का तो स्वास्थ्य के जौन फायदा करेला उमें देखा प्राकृतिक औषधि शरीर के डिटॉक्स करेला और पाचन तंत्र के मजबूत बनावेला, त्वचा में निखार लावे में मदद करेला। नींबू पुदीना अगर दोनों विटामिन और एंटी ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेट से भरपूर होला और मौसमी बीमारियों में जैसे सर्दी जुखाम और संक्रमण से लड़े के शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के भी मजबूत करेला। और एक चीज और बता दी आपका कि देखा इस समय जोन गर्मी माने हाँ अपने चरम सीमा में उम्मीद का हीट स्ट्रोक का मतलब ये है कि

फ्लू लगना एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें शरीर के तापमान के मतलब कलक 40 डिग्री से लेके जो ना कि 10 डिग्री तक से अधिक हो जाला तो बीपी के कल कलक की जो ब्लड प्रेशर होला ए पे सीधा असर पड़ला, जेकरे वजह से अचानक लो बीपी हो जाला या कभी हाई हो जाला, ऐसा समस्या देखा जानलेवा होला। इससे बचे खातिर हम लोगन के सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर न निकले के चाहिए। कोशिश यही रहे कि अपन काम धंधा जो है कि सवेरी सांझी में निपटा ले, लेकिन अगर बहुत जरूरत है तो कपारे पे गमछा रख ले, एक लोटा पानी पी ले, ओकरे बाद आम के पना पिए, बेल का शरबत पिए, खरबूजा बा, आपका हिरमाना बा, खीरा बा, ककड़ी बा, इस सब का भी सेवन करें। और कोशिश यही करें कि ये तपन में जो है ना कि अपन सारा काम समेट के घर के भीतर रहें, और जेकरे वजह से आपके जो है कि कोई परेशानी का समस्या ना करे को हो। और जब कहल गला कि अपन स्वास्थ्य अच्छा रहला तो सब कुछ देखा ठीक लगला, तो हम तक कहला कि देखा आप घड़ी की सुई भी इशारा करत हला कि अपन बैठकी समेटे के चाहिए। अगले बैठकी में आप लोगन से फिर भेंट मुलाकात हुई, तो चला चले के सब बहन लोगन के राम राम।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। केंद्र सरकार औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित कर दे हो। एमे गांवन में कप सिरप के बिक्री पर दिहल गई छूट वापिस ले लेल गई बा। अब गांवन में कफ सिरप का बिक्री आ वितरण खाली लाइसेंसी फार्मेसियन के जरिए कैल जाए।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से आवे वाला 21 जून के होखे वाले नीट UG के पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ावे आ पेपर लीक के अनिशा के खत्म करे बदे सरकार 22 जून ले टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेशा भेजले पर रोक लगा देले हो। NTA कहलस की प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन ने आ ओकरे जुड़ते बाद ले लागू रही। एजेंसी कहलस की टेलीग्राम के 30 तारीख ले पहले से पोस्ट कैल गल संदेशा के संपादित कैले के सुविधो बंद करे के निर्देश देहल गईल बा। उत्तर प्रदेश BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 को नतीजा

0: नतीजा आज घोषित कर दिया गया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी नतीजा जारी कैलिन। एह बरिस एह परीक्षा में अलीगढ़ का वंदना सिंह पहला जगह पाके प्रदेश में टॉप कैले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हैं कि पछिला दशक में देश भर में बुनियादी ढांचा में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर भइल बा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माई गांव का एगो पोस्ट साझा करत श्री मोदी कहले कि सरकार विकसित भारत के परिकल्पना के साकार करे बदे अगला पीढ़ी का अवसंरचना तैयार करे खातिर प्रतिबद्ध बा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 12 साल पूरा भइले पर प्रदेश का संसदीय कार्य आ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज लखनऊ में पत्रकार लोगों से बातचीत कैले। यह मौका पर वहां के कहने की केंद्र का मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 5,37,00,000 आवास बंटले हवे। इसमें उत्तर प्रदेश का 62,00,000 से बेसी परिवार शामिल हवे। यही कड़ी में मिर्जापुर जिला के BLJ ग्राउंड में जिला प्रशासन आ सूचना और जनसंपर्क विभाग लखनऊ के ओर से आज विकसित भारत प्रदर्शनी का आयोजन कैल गैल। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल एकर उद्घाटन कैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में पछिला 12 बरिस में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आ सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति भइल हो। आतंकवाद से निपटे बदे सरकार का सुन्न सहिष्णुता नीति के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कुशीनगर जिला के रामकोला थाना क्षेत्र में आज भई एगो सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक परिवार के 3 जने के मौत हो गईल, वहीं एगो औरियो सदस्य घायल बा। ये दुर्घटना उस समय भइल जब एक परिवार के 4 लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठ के बिहार के मदनपुर में देवी दर्शन बदे जात रहने आ एगो टैंकर उन्हें ठोकर मार देहलस। गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के कुछ औरियो जिलन में आज दोपहरिया बादे तेज आंधी के साथे भइल हलुका है बूंदाबांदी से लोगिन के उमस भरल गर्मी से कुछ राहत मिलल हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम, आपो के राम राम भोला भैया। पंचीती के डुगडुगी बजल और डुगडुगी बजेला तो जानकारी बहुत सारा बातचीत के माध्यम से मिलेला भैया।
1: बिल्कुल भैया, बिल्कुल राव भैया। और सबसे महत्वपूर्ण बात की इसमें देखा, आज से बचवालों की स्कूल भी खुल गई है।
0: बिल्कुल।
1: और इसने में जो बाकी धूप की देख करके बच बचा करके और पठन पाठन में भी रुचि ले बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: बहुत दिन खिलाए हुए लो, सबसे बड़ा बात तो आजकल जो जामुन जो पाकल हो गया, बहुत बचवा लोग जो बाकी चढ़ जाला ऊपरे और कहीं गर्म जो इसमें मौसम हो

0: एकरे वजह से पौध के जौन बाकी डंठल भी जौन बाकी खर हो जाला।
1: बिल्कुल
0: अब ऐसने में जौन बाकी कभी कभार तो जौन बाकी ऊपर टूट जाला तो साथे डाल के साथ नीचे आ जाला लोग, ऐसने में हाथ पांव भी टूटे के ज्यादा संदेह बनल रहला।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसे भी बच बचा करके जामुन खाए ठीक बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि अपन शरीर के क्षति हुए। जौन शरीर के मतलब सुरक्षा करे खातिर और अच्छा बनावे खातिर जौन बाकी आदमी आहार लेवत बहन फल खात बा, तो ओके ऐसा ना कि क्षति हो जाए, एक बचा के काम करे लग जरूरत हो गया।
1: एकदम एकदम सही कहा था। भला बिया और ओकरे साथ साथ बिया जब भी जो उन बाकी बचे के बात आवला तो बिया देखा हम लोगों ने अगर बचे के है तो बिया देखा खरीद करके खाए के पड़ी।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: खरीदे के बात आवला बिया तो जो उन बाकी आम हो गए, जामुन हो गए या
0: हाँ हाँ
1: अन्य जो उन बाकी फल हो गए, अमरुद हो गए और जौन हम लोगन के यहाँ फलला ओकरा भी देखा खरीद करके हम लोगन जौन बाकी आसानी से खा सकेला और ओकर आनंद ले सकेला। और जब खरीदारी के बात आवला भैया तो हम लोगन के जौन बाकी आत्मनिर्भर भारत के बात आवेला
0: बिल्कुल
1: वोकल फॉर लोकल, तो निश्चित रूप से भैया जौन बाकी वोकल फॉर लोकल के तभी जौन बाकी अर्थ हम लोगन के समझ में आई और हम लोगन के जौन बाकी आगे बढ़ा सकेला जब हम लोगन स्थानीय स्तर पर जौन बनल उत्पाद बा
0: बिल्कुल
1: ओकर हम
0: बिल्कुल
1: लोगन प्रयोग कर सके।
0: भाई
1: जैसे
0: काया
1: मैं
0: नहीं,
1: बिल्कुल
0: अब पता चल कि जो है कि पैकेट बन के आता बहरे से, अब ओके खरीदा दो 4 दिन पहले की जामुन तोड़ के, तो ओकर भी कोई मतलब नहीं हुए।
1: बिल्कुल
0: जौन अपने गांव गिराव में पेड़ लगल हो भैया, उन्हीं के सलाह से अगर जौन बाकी ले करके 2 पैसा उनके भी मिले और जौन बाकी अपन ये भी चल जाए ठीक ठाक जीविका भी, वही तरीके आम भी जौन अपने अंचल में हो। आजकल तो देखा तो भैया जौन बाकी अगर अपन लोकल के बात कर जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अपने देश के तो बात हल्ले हो, लेकिन अगर आप स्थानीय आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो।
1: बिल्कुल
0: अब जैसे होला का कि पहलू आदमी जौन बाकी ढोटी बना करके ओमे ये पियार तोड़े जाए,
1: एकदम
0: पियारो तो फलते हो भैया,
1: एकदम एकदम
0: वो पक रहल हो तो वो के जौन बाकी ये समय तुड़ाई हो रहल बा, तेन तो जौन बाकी पहले पक चुकल। तो एक एक खातिर जौन बाकी घरेलू बर्तन जौन बनल हो, पता चल जाए कि डोलची लेवे चल जाए आदमी बाहर से,
1: प्लास्टिक
0: वो
1: के
0: हाँ तो वो नुकसानदेह है। तो उससे ओकर जगह पर जौन बाकी अपन ये जौन बांस के जौन बनत हो भैया,
1: बर्तन
0: अपन
1: भैया
0: गांव गिराव में बन रहल हो, जौन बाकी छोटे छोटे जौन बाकी पुटिला बन जात ह, छोटे छोटे छनवा बन जात ह। अब ढोटी तो समय नहीं बनावत हूँ लोग, जौना के मुँह छोट होए और जौन बाकी अंदर से बड़ा होए, तो ओके माध्यम से तो ये सब के अगर प्रयोग हम लोग करें तो 2 काम हो। एक तो शुद्ध हो अपने यहाँ के, हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, हवा बयार भी हमें लगी जौन फल फूल रही नुकसान नहीं हुई और खराब नहीं हुई। और दूसरी बात जौन बाकी जो बनावल जाता हो अपने क्षेत्र में उनकी आमदनी भी हो जाता हो भैया।
1: एकदम एकदम सही कहा था भोला भैया। निश्चित रूप से भैया देखा जोन बाकी जोन भी उत्पाद हम लोगन के आसपास अपने क्षेत्र में अपने अंचल में अपने प्रदेश में बनत हुए निश्चित रूप से ओकरा जोन बाकी हम लोगन के खरीदारी करके उपयोग में लैले की जरूरत हुए। और अपने अंचल के बात आवेला ना भैया तो निश्चित रूप से भैया देखा मिट्टी के बर्तन हो गेल और बांस के भैया देखा छनवा हो गेल अपन
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: भी सामान हो गेल और ओकरे साथ साथ अगरबत्ती हो गेल, खादी के कपड़ा हो गेल, शहद हो गई, दोना पत्तल हो गेल और ये तरह के तमाम ऐसा उत्पाद हुआ
0: बिल्कुल
1: जेकरा भैया
0: बिल्कुल
1: देखा जोन बाकी ग्रामीण स्तर पे तो बनला लेकिन भैया देखा ओकर जोन एक तरह से कहा कि क्वालिटी होला जोन भैया देखा अच्छा होला तो वो जोन बाहर से जोन हम ले ला जाए। जैसे भैया देखा शहद हो गई, शहद भैया जोन हम लोगन के आसपास में जोन लोग निकालत हुआ ओकरा उपयोग में लावा और जोन बाहर से पैकिंग होके आवत बा ओकरा उपयोग में लावा तो निश्चित रूप से अंतर पड़ला। तो
0: बिल्कुल। और यही में देखा भैया अपने गांव गिराव के जौन पंच भैया लोग हैं ना बड़ी चालू समझ चल जाए कि अच्छा कोई घड़ा बनाओ था तो कोई जौन बाकी बांस के बर्तन बनाओ था, तो कोई जौन बाकी अगरबत्ती धूपबत्ती बना रहा हो, तो कोई जौन बाकी खादी के कपड़ा बनात बा, तो केहू जौन बाकी रेशम कीट पालन करके, तो जब मतलब कुल मिला करके केहू के अगर जो है कि बांस के बर्तन की जरूरत हो तो जौन बाकी बांस के बर्तन वाला से ले लेल जाए, लेकिन पानी सबके पिए के हो तो जौन बाकी घड़ा ले लो भैया।
1: एकदम
0: आज
1: एकदम
0: जौन बाकी जौन तरह तरह के फ्रिज और सब अपनावल जा रहा हो, तो ओके जगह पर जितना शीतल और जौन बाकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे काम घड़ा करला,
1: घड़ा
0: ओ
1: सुराही और
0: सुराही तो
1: बिल्कुल
0: ओकर फिर कौन काट बा भैया।
1: एकदम
0: तो
1: एकदम सही
0: ये जौन बाकी निश्चित रूप से हर पंच भैया लोग कुछ न कुछ बनावत बा, कोई बर्तन बनावत बा मिट्टी के, तो कोई बर्तन बनावत बा बांस के, तो कोई जौन बाकी कपड़ा बनावत बा,

0: जौना की जौन चीज की आवश्यकता हो एक दूसरे से आदान प्रदान करके लेवा दे करके भैया अपन निर्माण और अपने जौन बाकी ओकर उपयोग।
1: बिल्कुल सही कहा हुआ भोला भैया। और ओकरे साथ साथ भैया देखा एक चीज और हम लोगन के करे के चाहिए कि जौन भी भैया देखा उपयोग में लावे के बाद खरीदारी करे के बाद हम लोगन तो करते ही जा, लेकिन जौन भैया देखा ओकर प्रचार प्रसार के बात आवला, ओकर भैया देखा व्यवसायीकरण के बात आवला, तो जब भैया देखा हम लोगन के आस पास कोई वस्तु बढ़िया बनत हुए तो आज भैया डिजिटल जमाना हुए और निश्चित रूप से हम लोगन के ओकर सहारा लेकर के और जौन भी वस्तु बढ़िया हुए ओकर प्रचार प्रसार अपन भैया देखा राष्ट्रीय स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पूरे विश्व में जो बाकी फैलावे के काम करे के चाहिए, ताकि भैया देखा जब हम लोगन के भैया देखा अपने अंचल के टमाटर जब भैया देखा विदेश में जा सकला तो जोन हम लोगन के यहाँ जोन वस्तु बनत हुए जोन बढ़िया हुए वो भी विदेश तक जा सकला, तो निश्चित रूप से हम लोगन के अपने देश के अर्थव्यवस्था के सशक्त करे के हुए, सुदृढ़ करे के हुए, अपन गाँव के लोगन के आर्थिक मजबूती देवे के हुए, तो वोकल फॉर लोकल के जोन बाकी इस्तेमाल करे के चाहिए और आत्मनिर्भर भारत के कदम से कदम मिलाकर के चले
0: एक
1: के
0: से बढ़ के ये अपने अंचल में लोग हवन ऐसने मुलाकात हो गई है जोन बाकी देवनाथ भाई जी से।
1: बिल्कुल
0: जोन बाकी ये वनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर में आप हवन और आपकी देख रेख में समझ जाए कि बहुत कुछ विकास हो रहा हो अपने अंचल में। और यहाँ तक कि जोन अभी खादी कपड़ा की बात हम लोग के लिए वनवासी सेवा आश्रम में आज बनत है, बहुत लोग हमें जोन बाकी हुनरमंद हवन काम भी करत हवन।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बहुत कुछ आज ऐसा भी युवा पीढ़ी हो चल रहा हूँ भैया कि हुनर जोन पहले अपने अंचल में बिखरल जात रहे ओके कहीं न कहीं से लुप्त करते चल जा रहा हूँ।
1: बिल्कुल
0: यही विषय पर आज बात बात कही हुई रहे देवनाथ भाई जी से, तो कहत उनके जोन बाकी हम लोग
1: एकदम एकदम भैया बातचीत का भइल बा आप लोगन से एकदम जानल जाए और सुनल जाए।
2: बिल्कुल श्रोताओं, आज धीरे धीरे समाज में चिंता के विषय बन रही है कि आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है, जो वृद्ध लोगों के लिए या बड़े बुजुर्गों के लिए बैठ करके एक साथ बात करके उनके जो है कि सुख दुख में शामिल होने की जो बात आती है, आज युवा पीढ़ी में वो चीज़ दिख नहीं रहे हैं, जिसको लेकर के अभिभावक चिंतित हैं और हर रोज़ कुछ न कुछ जो है कि ये बातें आती हैं जो अपने उम्र के जो अभिभावक लोग हैं कि आगे आने वाला पीढ़ी क्या कुछ करेगा, उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, कैसा वार्ताव करनी चाहिए, इन सब विषयों पर जो है कि चिंतनशील है। और अक्सर कहने को मिलता है कि जो निरंतर पूर्व से चला आ रहा है सभ्यता संस्कृति उससे कहीं न कहीं बच्चे विमुख हो रहे हैं, और यह भी कि जो सृजनात्मक कार्य हैं जो कला कौशल हैं उससे भी विमुख हो रहे हैं। इसका किस प्रकार से जो है कि हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, आने वाले समय में कैसे कोई किसी को बता पाएगा जो हुनर रहा है अपने पूर्वजों का, इस पर भी चिंतनशील हो रही है। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत मयूरपुर ब्लॉक के गोविंदपुर आश्रम में श्री देवनाथ भाई जी से मुलाकात कर रहे हैं। आप चूँकि एक युवा पीढ़ी से लगायत जो पुराने हुनरमंद लोग हैं उनको भी प्रशिक्षण देने के काम करते हैं और ग्रामीण अंचल में घूम करके लोगों का परीक्षण भी करते हैं, क्या कुछ अनुभव है आपसे ही बातचीत होगी। देवनाथ भाई जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज युवा पीढ़ी को आप किस प्रकार से देखते हैं, जो पहले चूँकि विकास के क्रम में यदि हम लोग किया जाए भाई जी तो ये बात आती है कि जो पहले का क्रियाकलाप है जो हुनर है उसको जानते हुए आधुनिकता का जो विकास है उसको भी जाने तो उसको विकास कहा जाता है, और अगर पहले के चीज़ को छोड़ करके आज नया चीज़ धारण कर रहे हैं तो उसमें यही कहा जा सकता है कि वो पहले वाला चीज़ नहीं जान पा रहे हैं, वो आज वाला जान पा रहे हैं, तो लगभग बराबर हो गया, क्या अनुभव?
3: नहीं, धन्यवाद, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने इस विषय को इस मुद्दे को उठाया है और इस विषय को रखने का अवसर दिया। और अगर देखा जाए तो आज वास्तव में जो शुरुआत अगर किशोर उम्र के बच्चों से या युवाओं को देखा जाए तो ये बहुत ही समस्याएं बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन
2: जी,
3: कि जो है पहले के ज़माने में हम लोग के ज़माने में देखा जाए तो सारे बच्चे जो है घर में परिवार में हर चीज़ में काम बटाता था, जो है कोई जानवर चराता था तो कोई चरपाई बिनता था तो कोई खेतों में काम करता था, कोई मतलब हर परिवार का सदस्य इंगेज रहता

0: होता था और एक दूसरे से जुड़ा होता था।
1: जी जी जी।
0: लेकिन आज परिस्थितियां बहुत विपरीत होती जा रही हैं और युवाओं में जो है वो एक तरह से वो चमक धमक की दुनिया देख करके उसको उड़ान पर अपना जो है जीवन देखना चाह रहे हैं कि ये चीज बेकार है, गांव की जो आम चीज जो था
1: कल्चर है
0: वो ठीक नहीं है, ये चीज बहुत बढ़िया है। उससे जो है क्या हो रहा है, बहुत सारी जो है विकृतियां समाज में पैदा हो जा रही हैं। लोग जो है पैसे कमाने के होड़ में पढ़ाई छोड़ करके, किशोरावस्था से ही पढ़ाई छोड़ करके लोग जो है पलायन हो जा रहे हैं।
1: जी जी, जी
0: अगर गांव में देखा जाए तो, अगर शुरुआत करेंगे तो पहले के ज़माने में लड़कियां कम पढ़ती थी
1: जी
0: और लड़के अधिक पढ़ते थे, लेकिन आज जो है अगर स्कूलों में देखा जाए तो आठवीं के बाद ही जो है जूनियर हाई स्कूल में भी पता चला कि लड़कियां अधिक हैं लड़के कम हैं। तो
1: जी,
0: पता
1: जी,
0: करने पर पता चलता है कि वो बाहर कमाने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक तरह से समाज में बहुत ज़्यादा विकृतियाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो है इस उम्र में, पढ़ने की उम्र में, आगे बढ़ने का उम्र में जो है पैसे का, क्योंकि वो दुनिया अलग दिख रही है, मोबाइल दिख रही है, नशा दिख रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो पलायन हो जा रहे हैं। तो वो आज के लिए तो दिख रहा है कि हम पैसा कमाने, लेकिन कल की दृष्टि से वो बहुत ही सोचनीय
1: है, तो नहीं हो
0: अस्थायी नहीं है
1: जी,
0: और अपराध की दुनिया में बढ़ने वाले
1: बिल्कुल,
0: हैं,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनको जो है ठीक से समाज नहीं होगा और विकृतियां फैलेगी जो है, ये तो है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और
1: जी जी जी
0: अगर
1: अच्छा, जो अपने अंचल की अगर बात की जाए तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बैठ करके जो बातें करने की बात चलती थी, और दूसरी बात ये कि जो उनके द्वारा अर्जित गुण हैं वो संभवतः आज युवा पीढ़ी नहीं पा पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए घर छाना या हल बनाना, जुहा बनाना, दरवाजा इत्यादि बनाना, जो कौशल हैं उसको कैसे देखते हैं, मतलब कैसा समझ में आता
0: है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही उठाया, क्योंकि अगर हम अपने जीवन से देखा जाए तो मैं जो है जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय जो है खेतों का मेड़, आलू का मेड़ बनाना, प्याज का वो बनाना, चारपाई बुनना, अपने हाथों से जो है रुखना बसला चला करके हल बनाना, जुआठ को भी ठीक कर लेना,
1: जी, जी, जी, जी।
0: इस तरह के कौशल जो है, क्योंकि ये परिवार से होता था, पिताजी करते थे तो सीख करके हमने भी सीखा जो है अपने काम को, इस कारण से मैं आज भी उस काम को घर में अपने अच्छे से कर लेता हूँ। लेकिन जो है आज के जो है, अब वो पीढ़ी जो है खत्म हो गई, अब दूसरी पीढ़ी हो रही है, तो वो जो है आप देखते होंगे कि अब जो है खेती भी खत्म हो रहा है, हल बैल से खेती नहीं हो रहा, ट्रैक्टर से हो रहा है, तो वो चीज जो हल बनाने का, जुआ बनाने का, वो भी जो है खत्म हो रहा है। तो वो चीज जो है होने चाहिए, वो अस्थाई है, वो अस्थाई है।
1: बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जैसे अगर आप मान लीजिए हल जोत रहे हैं ट्रैक्टर से ही चाहे अन्य कृषि यंत्र से कम बोने का या फिर उसको जो है कि निराई गुड़ाई इत्यादि अनाज उत्पादन के तौर तरीका जानना ही चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन आज वो भी जो है कि
0: विलुप्त
1: हो रहा है। हमको तो ये भी लगता है कि जो जो पुराने लोग हैं वो कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप में शामिल नहीं हो पा रहे हैं बच्चे।
0: अभी आपको बता दें कि ये सब जो है गुण करने के लिए हम लोग बनवासी सेवा आश्रम का इस पर लगातार प्रयास हो रहा है
1: जी।
0: हम लोग जो है युवाओं के बीच में, किशोरों के बीच में, जो मुख्य रूप से किशोर किशोरी सहजीवन शिविर जो करते हैं
1: जी, जी जी जी,
0: उसमें इस तरह के प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों के साथ जो है कि वो जो है उनको ये चीज मिले। जैसे गाँव में जो है भेज दिया तो जो है क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनकी जीवन यापन के क्या क्या गुण था, उसको करके उसको डिस्कशन करना। अभी बच्चों को जो अगर यहाँ करते हैं तो उनको श्रमदान से कंपोस्ट बनाना, खाद बनाना, इस तरह के जो है हाथ के कौशल को जो है सिखाने का काम लगातार करते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने स्कूलों पर भी जो कुछ हुनर रस्सी बनाने का और छोटे मोटे चीज बनाने का करते रहते हैं जिससे उनका हाथ का जो है कला चलता रहे।
1: अब आज सबसे महत्वपूर्ण जिसे मान लिया जाए सेल्फी लेता है लोग,
0: हाँ।
1: कहाँ लेता है? तो पेड़ पौधे जहाँ दिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जहाँ झरने चल रहे हैं या जहाँ कोई अच्छा अच्छा जो है कि प्राकृतिक दृश्य है। लेकिन वो प्राकृतिक दृश्य को सुंदर बनाने के लिए, पौधे को उगाने के लिए भी कला होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उसके लिए गड्ढा खोदने के लिए अपने पास कला होनी चाहिए और उससे जो है कि फावड़ा चलाने जानना चाहिए, तभी संभव हो पाएगा। लेकिन शायद यह भी नहीं हो पा रहा है।
0: ये जो है अगर हर युवा में इस तरह के गुण हो
1: जी
0: कि जो है सब लोग अब पौधे को लगाए, संरक्षित करें और उसको बढ़ाने के लिए वो करे, तो जो है गांव हरा भरा होगा और एक हुनर भी होगा
1: जी।
0: तो इस तरह का काम लगातार प्रयास करने की जरूरत है, समाज को भी जरूरत है करने

0: का। और आपको बता दें कि ये अभी आश्रम में जो है 1 महीने का हम लोगों ने समर कैंप रखा है, करीब 60 60 बच्चों का रखा है। तो
1: जी
0: उसमें जो है बच्चों को हुनर सिखाने की ही बात हो रही कर रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी जी जी
0: जिसमें सिलाई भी सिखा रहे हैं, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को जो है क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर भी ज़रूरी है,
1: जी जी जी
0: कंप्यूटर
1: जी
0: भी सिखा रहे हैं उनको। जो है हम लोग जो है जैविक खेती बनाने की प्रक्रिया को सिखा रहे हैं, पशुपालन भी सिखा रहे हैं उसमें, और उसके अलावा बिजली की टेक्निक, बिजली वायरिंग से संबंधित कैसे होता है उस काम को भी सिखा रहे हैं, और पुस्तकीय ज्ञान कैसे बच्चों को जो है पढ़ने का जो है प्रेरणा मिले इस बात को हम लोग जो है उसमें कर रहे हैं। तो पूरे हमारे 1 महीने का इसको समर कैंप में हम लोगों ने रखा है इसमें जो है। और हमारे सब गांव के बच्चे हैं,
1: जी जी जी जी
0: और हम
1: जी
0: लोगों ने किशोर समूह बनाया है 37 पंचायतों में, और 37 पंचायतों में जो किशोर समूह के जो है उनमें से बच्चों को लिया है कि जो है बच्चों का जो है जिसमें रुचि है उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएं।
1: जी आज जो है कि केवल अधिकाधिक जैसे पढ़ने के लिए अगर बात की जाए तो कोचिंग 3 4 कोचिंग 5 कोचिंग ऐसे चले जा रहा है लोग, लेकिन केवल सुन रहा है दूसरे का, अपना जो है कि स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाध्याय में तो बहुत दम है ऐसा।
0: बिल्कुल, अगर आपने जो है ये भी एक किताब पढ़ने की नशा है, और जिसको किताब पढ़ने की नशा हो गया तो वो बहुत बड़ा आगे निकल सकता है। अब हम लोग का प्रयास है, आश्रम का भी प्रयास है, अभी आपको बता दें कि अभी हम लोगों ने 5 जगह कम्युनिटी लाइब्रेरी दिया है, उसमें हर तरह की किताबें रखा है, जिसमें जो है स्वास्थ्य को लेकर, खेती को लेकर, बच्चों को लेकर, कंपटीशन से लेकर के, और विचारों का, इस तरह अलग अलग किताब रखा है। और उसमें हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि उसको जो है जब आपकी सुविधा हो किताब ले जाकर पढ़ सकते हैं या वहाँ आकर पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने व्यवस्था दिया है कि एक सोलर लैंप भी दिया है और वहाँ जो है बैठ करके पढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये बच्चों में जो है अगर ये स्वस्थ आदत होगी तो हमें लगता है उनका जीवन स्वस्थ होगा और पढ़ने का जो है एक आदत फिर से आएगी।
1: तो श्रोताओं देखें कितनी अच्छी बातचीत चल रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे जो भी आपके आसपास में काम हो रहे हैं उसके प्रति हमारा दृष्टि कैसी है, ध्यान कैसा है। अगर ध्यान देते हैं तो उस काम को भी हमको जानना चाहिए, और जो आधुनिक कार्य है उसको भी हमको जाननी चाहिए, तब जाकर के हम विकास के क्रम में जुड़ सकते हैं। आज युवा पीढ़ी नशा में भी जो है कि लिप्त होते दिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं से बर्बादी है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो रहा है। उससे बचने के लिए हमको स्वाध्याय के प्रति चलना चाहिए और बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए श्री देवनाथ भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: भोला भैया।
1: हाँ भैया।
6: देखिए जानकारी के क्रम में बहुत सारा बातचीत भैलक, लेकिन हम तो कहब कि मर मंसन के क्रम में विजय कुमार अफसानी उनका संगतिया के गाँव एक ठो मन फेर सुनल जाए।
1: बिल्कुल भैया सुना।

0: भोला भैया। हाँ भोला भैया,
1: कितना बढ़िया विजय कुमार साहने और उनके संघातिया भैया से मनमोहन साहन करवाला ना आप, तो इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद हो भैया।
0: बिल्कुल भैया,
1: भैया सबसे महत्वपूर्ण की समय जो बाकी हम लोग के केंद्र सरकार के जौन 12 वर्ष चल रहा हो बीतल, एक माध्यम से मतलब कितना तरह तरह के जौन बाकी हम लोग के उपलब्धि मिलल, चाहे ग्राम पंच भैया लोगन के, चाहे किसान भैया लोगन के।
0: बिल्कुल भैया,
1: क्षेत्र से जौन बाकी, तो निश्चित रूप से हम लोग के पालन करे के चाहिए और निरंतर पर जौन बाकी हम लोग के लगे रहे।
0: एकदम भैया, और घड़ी के सुई कहते हुए कि आज के जौन पंचायती बा यही समेटल जाए, तो क्या कहते हुए भैया चल जाए
1: सब पंचन के
0: राम राम।

0: अभी हमारे ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भैया बोला जय जवान जय किसान।
1: भोला भैया
2: हम रहो
1: बसुरी बजल भैया और बसुरी बजले के साथ सब साथ भैया जवान बाकी हम लोग भी कार्यक्रम में जुटी गए है।
2: बिल्कुल,
1: और
2: बिल्कुल,
1: मौसम
2: बिल्कुल।
1: के मिजाज भैया देखा जवान बाकी तापमान तो बढ़े हुए लेकिन कभी कभी भैया देखे के मिलत हुए कि आंधी तूफान के साथ साथ भैया देखा
2: बादल भी पानी बुनी भी पड़ रही रहा।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन इसने में जन बाकी किसान भाइयों के सतर्क हो जाने की जरूरत है। जवन अगेती अगर अपने यहाँ साधन सुविधा हो तो धान की बिया भी कर देने की जरूरत है कि पानी बरसित तत्काल आदमी रोपाई कर सके
1: एकदम भैया।
2: और साथ साथ जौन बाकी जौन कई लोग अपने खेत में लग गए हुए भैया ओके
1: हाँ।
2: भी जौन बाकी मेढ़ के सैयार लेने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि पानी बरसे और खेत के मलाई बह जाए
1: एकदम एकदम
2: भी ध्यान देने की जरूरत है। जौन आस पास में अभी जुताई नहीं कर पाले हुए हैं तो अभी भी गर्मी की जुताई कर दें
1: एकदम
2: से खेत कुछ सुना जाए। और वहीं बागवानी के खातिर अगर जौन बाकी गड्ढा खोदल चाहिए लोग
1: हाँ भैया
2: वो के खोद देवे अगर खोद ले हों तो कोई बात नहीं
1: एकदम। और ओकरे साथ साथ अपने अंचल के न्यूनतम तापमान भी है 31 डिग्री सेल्सियस रहले और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहले। और इसने भी देखा हम लोगन के खेती किसानी में अपन काम तो करते ही जा लेकिन खरीफ सीजन आवे वाला हुए ऐसने में उर्वरक प्रबंधन के जब बात आवेला तो निश्चित रूप से हम लोगन के जौन भी रासायनिक खाद दवा हुए ओकरा परहेज कैले के जरूरत हुए और जोन भी जैविक खाद हुए जेकरा में वर्मी कंपोस्ट नाडेप कंपोस्ट हरी खाद वाला तो ओकर बिया देखा जुगत बना करके अपने खेत में बिया देखा उपयोग कैले के जरूरत
2: है। अब माटी के जांच भी लोग कराई रहल हो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जोन गोबर के खाद के बात आप करते हैं वर्मी कंपोस्ट के
1: हाँ भैया
2: चाहे जोन भी पोषक तत्व की आवश्यकता हो ओके एक निश्चित अनुपात में पूरा करला।
1: बिल्कुल
2: ओके जोन बाकी हम लोग ध्यान से वर्मी कंपोस्ट पर ज्यादा जोर दें और ऐसे जौन बाकी माटी के स्वास्थ्य पर भी जौन बाकी अच्छा असर रही
1: एकदम
2: भैया उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई। बात बत कही हम लोग के भी होत रही भैया
1: एकदम।
2: लेकिन आज जौन बाकी बाजार भाव भी मिल गिल रावसगंज मंडी से कुंतल में बाबूलाल मोर भैया भेजले हुआ
1: एकदम
2: समय पर बाँचल जाये लेकिन सफलता की कहानी क्रम

0: आज मुर्गी बत्तख के चूजा उत्पादन करे के व्यवसाय का कुछ रूप दिले हवन जौन बाकी दिनेश कुमार मौर्य भैया जौन अनवेशी कृषक हवन
1: हाँ भैया,
0: उनसे जौन बाकी बात बत कहे के हवन मुनई भैया, और का कुछ जानकारी हो ये बिल्कुल हम लोग के भी जानने की जरूरत हो, प्रयोग के लिए जरूरत है,
1: एकदम।
0: तो हम तो कहब कि एक पहले हम लोग सुन लेवल जाए और फिर ध्यान से एक हम लोग अपनावे की कोशिश भी करल जाए।
1: एकदम सुनल जाए भैया।
2: किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती किसानी से जुड़ल है और अक्सर हम लोगन बात करीला कि खेती किसानी अगर करत ही तो उनमें विविधीकरण अपनाई, कृषि विविधीकरण का बात होला और ओकरे साथे साथे हम लोगन बात करीला समन्वित कृषि प्रणाली का। तो आज देखें जौन की समन्वित कृषि प्रणाली के अपनौले हम, आज हम लोगन के साथ अपने कार्यक्रम में दिनेश कुमार मौर्य साहब हम, जौन की आप हेचरी यानी चूजा उत्पादन आप करना और खेती किसानी के साथ साथ एक सह व्यवसाय के रूप में एके अपनाए का आपन एक अच्छी आमदनी करत हुआ। दिनेश कुमार भैया, आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बतावें कि आपके मन में ये कैसे विचार आयल कि हम चूजा उत्पादन से जुड़ी।
3: सर प्रणाम, पहले तो सबको हम प्रणाम कर रहे हैं।
2: जी
3: हमारे विचार में आया कि पहले हम व्यापार कपड़े का करते थे,
2: जी जी
3: और कापी किताब का भी किए हुए हैं, तो हम YouTube में देखते थे और सोचते थे कुछ साइड से ऐसा काम किया जाए जो कि दुकान पे 12 घंटा बैठने भी न पड़े, ज्यादा हमको परेशानी भी न झेलना पड़े और हमेशा खाली रहें
2: जी
3: और
2: जी
3: एक अलग से अच्छा खासा इनकम बनाने का तरीका बनाया जाए। तो हमने YouTube पे देख के फिर उसके बाद सोचे कि बत्तख का उसमें आ रहा था, उसमें दिखा रहा था कि 10 रुपए अंडे 10 रुपए अंडे
2: जी
3: बिक
2: जी
3: रहा है, तो हुआ कि 500 1000 बत्तख ला के हम लोग भी देखते हैं कि कितना उत्पादन होता है।
2: जी
3: और उसमें पैसे में मन में लालच आया कि 10 रुपया मिलेगा और 1000 2000 बत्तख रखते हैं तो पर डे 10 हजार 5 हजार का हम काम करेंगे अगर
2: जी जी
3: 1000 अंडा निकला तो।
2: हाँ हाँ
3: तो इसके बाद हमने बाइक से गए चंदौली,
2: जी
3: जो नदी नदी में तालाब में रख के लोग जिलाते हैं,
2: हाँ हाँ
3: वहां हम गए देखे और उन लोग से मिले, खर्चा वर्चा भी किए, बुलाए वो सब आए और देखे कि जो भी बत्तख वाले हैं सब पल्सर गाड़ी से चल रहे हैं और
2: अच्छा
3: बढ़िया बढ़िया गाड़ी चल रहे हैं और घूम रहे हैं, वही गाना बजा रहे हैं, देख रहे हैं मोबाइल और पैसे। उनसे पूछे तो पता चला कि मतलब कि 10 रुपए का अंडा हम लोग बेचते हैं, 22 23 रुपए का चूजा इसका मिलता है और इसको हम लोग चरा खिला के ही अधिकतम अंडा निकालते हैं, फार्मिंग नहीं करते
2: जी
3: फार्म
2: जी
3: में। तो हमारे विचार में आया कि हम लोग फार्म करेंगे हम लोग तो चरा पाएंगे नहीं, तो हम एक दोस्त मेरा था उससे परिचय करके बिहार में हम एक लोग से मिले और उनसे बात हुआ तो बोले कि हम खाकी कैम्बल का चूजा हम देखे थे और इंडिया रनर तो देखे थे कि खाकी कैम्बल फार्म में रखा जा सकता है, तो उनसे बात किए तो हमको 2020 में वो बताया कि 90 रुपया चूजा मिलेगा
2: अच्छा।
3: और 90 रुपया चूजा के हिसाब से हमने उनको पैसे दे दिए 4000 चूजे का दिए। फिर हमको चूजा एक एक 1.5 महीना बाद ले आके दिए, 9 दिसंबर माह में हमको दिए थे, 26 दिसंबर 4 जनवरी के लगभग में,
2: जी
3: जिसमें
2: जी
3: से हम लोग को पालने का उतना आइडिया नहीं था तो उसमें मेरा चूजा कुछ नुकसान भी हो गया 1000 1.5 हजार। फिर हमने पाला, बड़ा किए लेकिन हम लोग इतना खाते पीते थे कि हम लोग उससे फायदा वहां नहीं निकाल पाए, परेशान हो गए,
2: जी
3: तो हम
2: जी
3: सोचे कि अब क्या करें, ज्यादा खर्चा भी लग रहा है। तो फिर उनसे कहे तो बोले कि इसको बेच दीजिए, तो हम उस चूजे को बत्तख को जो मेरा बड़ा हुआ था हम उनको उन्हीं जिनके माध्यम से लेते उन्हीं के माध्यम से बेच दिए। वो
2: जी
3: आजमगढ़ में गया और उस समय के सांसद है रामाकांत यादव, उनके यहाँ मेरा 4,20,000 का एक बार बत्तख लिए, फिर 1.5 लाख रुपए के एक बत्तख बेचे, उसी में से 78,000 72,000 का भी हमने बत्तख बेचा, 1,48,000 के भी बत्तख बेचे, सब बेच के खत्म करके बोले कि ये में ज्यादा खर्चा है और तालाब भी उसके लिए बनवाए थे, फिर तालाब को पटवाए, फिर बोले सोनाली मुर्गी का पालन आप करिए, तो
2: अच्छा
3: इसमें उतना लफड़ा नहीं है, आसानी से अंडे भी उत्पादन कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो फिर हम उनसे 7,000 मुर्गी का चूजा मंगा दिए इकट्ठा,
2: अच्छा
3: 7,000 मंगाए, उसमें भी पालन किए, इतना ज्यादा ज्यादा हम मंगा लिए कि हम लोग संभाल नहीं पाए, तो उसमें भी नुकसानी हुआ चूजे में। फिर
2: जी
3: बड़ा हुआ, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के समय हमने गाड़ी भी लिया, मेरा मुर्गा 20 से 25 लाख रुपए का लगभग तैयार हो चुका था, गाड़ी लिए, लॉकडाउन से पहले ही गाड़ी हम बुक कराए थे, लॉकडाउन 1.5 महीने चला, उसके बाद 1 2 जून तक हमारे पास गाड़ी आ गई, उसी से हमने बनारस से सप्लाई किया, अच्छा खासा उसमें मुनाफा आता था, 350 360 450 ऐसे हम लोग फुटकरिया में बेचते थे, थोक में 340 350 300। उसके बाद फिर हम लोग कहे कि ये जो अंडे देने लगी, अंडा देने लगा, तो अंडे को हम बनारस में ही वहाँ पे चंदौली में अंडा देते थे राजिंदर सुनकर हैं उनको, तो 10 रुपया का रेट हमसे लेते थे और चूजा 40 रुपए का देते थे।
2: अच्छा,
3: तो हम सोचे कि 40 रुपए का चूजा दे रहे हैं, 10 रुपए का अंडा ले रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग हैचरी प्लांट ही लगाए जाए।
2: अच्छा।
3: और हम ये सोच के लगाए थे कि पहले छोटी मशीन लगाते हैं और 10 रुपए का है तो कितना पूछे हम लोग कितना निकलता है, तो बोले कि 60-70% 80% चूजा निकलता है। फिर हमने प्लान किया एक दोस्त मित्र के साथ मिल के, फिर हम दिल्ली गए क्रमसार का वहां मशीन देखे, फिर अपना घर बनवाना चालू किया अक्टूबर 2020 में। उसके बाद 4 जनवरी को हम बनारस वहां से दिल्ली से मशीन मंगा कर क्रमसार कंपनी का शुरू कर दिए। शुरू करने से पहले हमको नुकसानी भी बड़ा हुआ।
2: अच्छा।
3: जो मेरे पास मुर्गियां थी वो बीमार हो गई, हम बाहर से मुर्गा ले आकर सेल करते उसमें बीमारी आ गया और सारी मेरी मुर्गियां मर गई। उस समय हमारे पास लगभग 400-350 अंडा आता था, यानी कि 3,500-4,000 का पर डे अंडा आता था, 1.5-2 लाख 1.5-2 लाख रुपए का अंडा महीने का होता था। लेकिन हम जो सोचे थे, मेरा मशीन तो लगने ही लगा आ ही गया, लेकिन वो सब मुर्गियां खत्म हो गई हमारी, मर गई।
2: अच्छा, तो उखरे बाद फिर आप कैसे हैचरी से जुड़ना और आज का स्थिति बा?
3: हैचरी से फिर हम दूसरे लोग से अंडा लेना चालू किए, कलकत्ता से अंडा मंगवाए, फिर चंदौली के लोग जो लोकल बत्तख पालन करते हैं उनसे अंडा लेना चालू किए, संपर्क किए, और बंगाल जाके बेचने का भी संपर्क किए, वहां पे ले जाके हम अपना चूजा बेचने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे धीरे मशीन को भी हमने बढ़ाया, घाटा नाफा दोनों हुआ। जाड़े के दिन में हम लोग घाटा खा जाते थे, कभी ईद त्योहार में भी घाटा खाते थे, और फायदा भी हुआ, फिर भी फायदा देते ही गया। आज फायदा करते करते हमारी जो 70,000 लिमिट की मशीनें थी, आज 2 लाख प्लस की मशीनें लिमिट बढ़ गया है।
2: अच्छा,
3: 2 लाख प्लस।
2: चूजे दिनेश भैया की जब आप ये समय आपके यहाँ कितना चूजा पर डे निकला कि महीना पर निकला?
3: नहीं, उस पे शेड्यूल होता है इसका 5 दिन पे।
2: जी जी।
3: तो हर 5 दिन पे हमारे यहाँ जैसे कि 35,000 इसमें हम अंडा डाल रहे हैं, पहले छोटी मशीन थे तो हर 5 दिन पे हम 18-20 हजार डालते थे।
2: अच्छा,
3: तो
2: अच्छा।
3: लगभग मेरा ये 80,000 से 90,000 चूजा पहले निकलता था, अब हम 1,30,000-1,40,000 एक महीने में चूजा निकाल सकते हैं।
2: ये अंडा स्वयं अपने यहाँ उत्पादन कराना कि कहीं बाहर?
3: हम उत्पादन करते थे मुर्गी का, लेकिन इसमें उत्पादन हम सब खरीद रहे हैं इस समय
2: अंडा।
3: हाँ, अंडा खरीद रहे हैं।
2: अंडा कहाँ से ले आओ ना, मुर्गी कैसे पड़ा ला?
3: मुर्गी का अंडा हम यहाँ पटवद में सिखाए हैं, एक दिनेश मौर्या हैं, तो पहले ब्रॉयलर फार्मिंग करते थे, तो उनको बोले कि ब्रॉयलर फार्मिंग न करके आप सोनाली का करिए, इसका अंडे का कारोबार करिए, अच्छा खासा मुनाफा होगा। हालांकि वो काम किए, शुरू किए और चल रहा है, और इसमें 3200 उनके पास मुर्गियां हैं, 1700-1800 पर डे अंडा निकलता है।
2: अच्छा।
3: हाँ, और उनका अंडा मेरे पास जाता है हर 5 दिन पे 8,000, 8,200, 7,800 और हम उसमें से 80% का उत्पादन करके अपना बनारस में और इधर गढ़वा झारखंड ये सब सप्लाई दे रहे हैं। और जो बत्तख का है उसका हम अंडा इस समय मुजफ्फरपुर से और वहाँ कई जगह से ले रहे हैं, मुजफ्फरपुर क्षेत्र। अच्छा। से
2: यानी कि मुर्गी और बत्तख दोनों का माने चूजा उत्पादन आप कराना।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
2: अच्छा, ये अंडा जब आप ले जाना तो वहाँ हेचरी में आपके वो मशीन में का करे के पड़ा ला भैया?
3: अंडा जैसे आएगा पेटी हम लोग खोलेंगे और अंडे के ट्रे में उसको ट्रे डालेंगे, अंडे का ट्रे होता है मशीन में, ट्रे में सरिया के उसमें डाल दिया जाएगा
2: जी,
3: और बत्तख का मुर्गी का 21 दिन पे और बत्तख का 28 दिन पे चूजे निकल जाते हैं।
2: तो ओकरे बदे कुछ ओकर देखभाल भी करे पड़े?
3: कुछ नहीं, उसका ऑटोमेटिक मशीन है, टेम्परेचर ऑलरेडी बिजली इसमें रहना चाहिए, सही चलता है।
2: अच्छा।
3: हाँ।
2: तो जैसे विद्युत व्यवस्था आप कैसे कर ले?
3: विद्युत व्यवस्था के लिए हमारे पास 25 किलो वाट का हमने ट्रांसफार्मर पर्सनल अपना लगवाया है, जिसमें 18 का कनेक्शन है, 40 हॉर्स पावर का डीजी भी हमने खरीदा है, और 20 किलोवाट सोलर पैनल भी लगवाया है।
2: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, तो दिन में हमारा सोलर से 8 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता है, लाइट अगर कट गया है तो हम जनरेटर चलाते हैं, लाइट नहीं कटा है तो हम बिजली चलाते हैं।
2: अच्छा दिनेश भैया, जैसे जब अंडा में से आपको चूजा निकल जाना तो वो समय उनका सामयिक देखभाल आप कैसे कराना?
3: उसमें कुछ नहीं करना पड़ता सर, उसमें जैसे ही चूजा निकला बस चूजा निकाल के उसको पैकिंग करके जहाँ भी भेजना भेजिए, 48 घंटे 36 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
2: अच्छा।
3: चाहे कहीं भी आप सप्लाई कर दीजिए, 2 दिन 1.5 दिन में सप्लाई हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ज्यादा हीट और गर्मी है तो लोग उसमें खरबूजे का या ये हिंदवाना वगैरह सब डालते हैं टुकड़ा बना के,
2: तो वो टुकड़ा बनोले से का फायदा
3: दिया जाता है कि उनके मन में उनके मुंह में मतलब मिठास जाए और शुगर उनका बढ़ा रहे।
2: अच्छा।
3: भूख प्यास न लगे और अपने जगह तक पहुंच जाए। फिर फार्म में जाने के बाद उनको दाना पानी दिया जाएगा, फार्म में गया तो उनको गुड़ पानी पहले दे दीजिए, थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं, उसके बाद दाना दे के खिलाते पिलाते रहिए। सोनाली हमारी मुर्गी जो है कि 80 से 85 दिन में 1100-1200 ग्राम हो जाएगा और आपका मिनिमम ₹250 में थोक में बिक जाएगा।
2: अच्छा।
3: 240-250 में फुटकरिया 350-400 जो जैसे चाहे वैसे बेच लेते हैं। हाँ
2: और जो बतख का अंडा मा
3: बतख में हम लोग चूजा भेजते हैं तो वो भी जाएगा, उसको 8-10 दिन आप दाना पानी खिला लेंगे, बाकी अधिकतम उस सब फेरी कर देते हैं, चाहे कुछ भी आप खिलाइए पिलाइए, कोई बीमारी रोग दुख उसमें नहीं है। जो भी आप खिलाएंगे अपने घर का सामान चावल दाल या सब्जी

0: जी का बेस्ट जो भी है उसको खिलाइए, वो सब अच्छे से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे और आपको अंडे भी देंगे।
1: अच्छा, जैसे अगर मान लें एक जैसे 100 अंडा आप मुर्गी का रखत हैं, तो उनमें कितना चूजा निकल जाती हैं?
0: मुर्गी के 100 अंडा में गर्मी के दिन में 75 से 80%
1: अच्छा,
0: और जनवरी से मार्च तक में 85 से 90% चूजा उत्पादन होता है।
1: और बतख वाले में?
0: बत्तख वाले में क्योंकि वो ऐसे जगह से आता है, नदी नाले लोग चराते हैं, रखे हुए हैं फील्ड, खुले फील्ड में, वहां से बटोर के आता है, तो उसमें अधिकतम 80%। और इस समय अक्टूबर मतलब इस समय आएगा फरवरी मार्च अप्रैल तक, मई तक 80 तक आ सकता है, 75 से 80। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे घटते जाता है जून जुलाई अगस्त में। अगस्त में तो लगता ही नहीं, बरसात होगा तो अंडा नहीं लगेगा। इस समय 55, 60, 50 ऐसे उसका परसेंटेज आता है।
1: अच्छा, जिसे आप अंडा लेना तो कैसे सैकड़ा आपके अंडा मिल जाला?
0: इस समय मुर्गी का अंडा 9 रुपया हम लोग ले रहे हैं,
1: जी
0: हालांकि जनवरी से ही 9 रुपये का रेट चल रहा है। और बत्तख का हमारा हमारे यहाँ ला के लोग देते हैं अंडा, भाड़े किराए के साथ पहुंचा के 12 रुपये, 11.5 से 12 रुपये का हम लोग लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: माने अंडा
0: हाँ एक अंडा
1: चूजा अगर आप बेचत हो तो कैसे
0: इस समय
1: बेचना?
0: मुर्गी का हम थोक में चूजा 18 रुपये का दे रहे हैं और
1: अच्छा,
0: बत्तख का हम थोक में 24 रुपये, 24.5 ऐसे चल रहा है इस समय तत्काल में। इस साल रेट डाउन है, नहीं तो अब तक 28-30 का रेट होता है, हालांकि अब रेट बढ़ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर ही। बहुत गर्मी, अंडे की कमी हो गई है, चूजे का उत्पादन कम हो गया, तो हम लोग का रेट बढ़ जाएगा।
1: अच्छा, माने चूजा अगर कम मिली है तो आमदनी बढ़ जाए। अच्छा, बेचे बदे बाजार आप लोगन कैसे उपलब्ध कराना?
0: सब हम लोग एजेंट माध्यम से अभी हम अपना सोनाली बेचते हैं,
1: जी
0: बनारस में भी देते हैं, गढ़वा झारखंड में देते हैं, कोन में देते हैं, लोकल क्षेत्र में गोपीगंज के तरफ भी हम एजेंट जो हैं उनको देते हैं, वो लोग अपना सप्लाई करते हैं। बिहार में भी हम एजेंट जो हैं इनके जो सेल्समैन हैं उनको देते हैं, वो अपना ले जाकर फार फार में सेल कराते हैं, हम थोक में ही बेचते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कहते हो दिनेश भैया। देखें एकदम जौन आपका अपन अनुभव बा अपने किसान भाई लोगों के साथ आप आज साझा कैलें, और आप एक सफल कृषि सह व्यवसायिक बनकर आगे बढ़त हुआ। आपका जौन सफलता का कहानी रहल जौन अपन किसान भाई लोग आज सुनत हुआ, वो जरूर आपसे सीख लिए हैं कि खेती किसानी के साथ साथ कौनो न कौनो कृषि सह व्यवसाय उनके जरूर करे के चाहिए। दिनेश भैया आज आप अपने कार्यक्रम में आई ना, और इतना बढ़िया अपन अनुभव आप साझा कैलेन, अपने सफलता का कहानी बतौलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक, प्रणाम सर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
7: पर हम तो सभी डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है, ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है, और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें, और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो, हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद।
10: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
11: भोला भैया,
12: हाँ राव,
11: देखिए कितना बढ़िया हम लोगन के जोन बाकी संदेश भी सुने के मिलल, और ओकरे साथ साथ सफलता की कहानी मुर्गी बत्तख चूजा उत्पादन का व्यवसायिक रूप, एक बारे में दिनेश कुमार मौर्या भैया के बहुत बढ़िया जानकारी मुनई भैया के बातचीत के माध्यम से सुने के मिलल, और निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगन के भी सह व्यवसाय के रूप में कोई ना कोई व्यवसाय करे के चाहिए, और हम तो कहब कि भैया देखा इतना बढ़िया जोन बाकी कार्यक्रम सुने के मिलल।
12: अब हम लोग जोन बाकी केंद्र सरकार के जोन 12 वर्ष के उपलब्धियां हो, एक अंतर्गत जोन बाकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के विषय में अश्विनी कुमार सिंह अपना जोन विचार बतावत हो,
11: बिल्कुल
12: ओके भी हम लोग सुन लो जाए भैया, एक बात फिर मन मन सहन हुई,
11: एकदम सुनल जाए और जानल जाए भैया।
13: किसान भाई लोग देखे, आज हमारे साथ अश्विनी सिंह साहब हवा विषय वस्तु विशेषज्ञ, आप कृषि विभाग सोनभद्र से हवा, और आज अपने साथ हुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत बा। अश्विनी सिंह साहब जौन अपन केंद्र सरकार बा, वो अपन 12 वर्ष पूर्ण कैले ले बा, और सरकार का तमाम तरह का कल्याणकारी योजना अपने किसान भाई लोगन बदे चलत रहल है, तो जौन मृदा स्वास्थ्य कार्ड बा जेके सॉयल हेल्थ कार्ड भी बोलल जाला, तो ओकरे बारे में अपने किसान भाई लोगन से का कहल चाहिए, का बतावल चाहिए?
14: देखिए किसान भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2015-16 में 19 फरवरी 2015
13: जी
14: के राजस्थान के सूरतगढ़ से एक कार्यक्रम के शुरुआत कैलन। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे हम अपनी ब्लड की जांच, खून की जांच करा के अपने खून में या अपने शरीर में जो भी कमियां थी उस तरीके से हम लोग दवा करते थे, उसी तरीके से उन्होंने एक सपना देखा कि हम अपने किसानों की मिट्टी की जाँच कराएं और निःशुल्क जाँच कराएं। उस जांच के बाद जो भी कमियां आए उस कमियों के आधार पे हम अपने उर्वरकों का प्रयोग करें, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें
13: जी।
14: और हम अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाए। उसी के परिपेक्ष में वर्ष 2015-16 से लेकर आज तक हम लोग प्रतिवर्ष अपने यहाँ जनपद सोनभद्र के किसानों की मिट्टी को निःशुल्क जाँच करते हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा हमको जो भी जिन भी गांवों का चयन होकर आता है उन गांवों से मिट्टियां आती हैं, उन मिट्टियों का हम 12 पैरामीटर पर उनकी जांच करते हैं। उनकी जांच करने के उपरांत हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से उनके यहाँ वितरित कराते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था जैसा हमने पहले ही बताया कि हम ये जाने कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है। विशेष रूप से हमारा जो गिरता हुआ ऑर्गेनिक कार्बन है, उस गिरते हुए ऑर्गेनिक कार्बन इतनी चिंतित अवस्था में हो गई है कि आप देखेंगे कि इस समय हम बिल्कुल ये कहें कि मृत अवस्था में हमारी मिट्टियां पहुंच गई हैं। उसका प्रमुख कारण ये भी रहा कि हमने जो है उत्पादन तो लिया लेकिन टिकाऊ उत्पादन नहीं लिया। अत्यधिक उत्पादन की चाह में हमने अत्यधिक फर्टिलाइजर उर्वरकों का प्रयोग किया, उसके साथ साथ हमने लगातार खेती की, हमने मिट्टी को बिल्कुल जैसे कहें कि उसको जीने नहीं दिया। तीन तीन फसलें, चार चार फसलें हम लगातार ले रहे हैं। उसके साथ साथ हम उसमें कुछ ऐसा तत्व या हम उसका कुछ ऐसा अवशेष मिट्टी में नहीं छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य सुधर सके। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम में विशेष जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं अपने कृषि विभाग से कि अपने मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने खरीफ सीजन की शुरुआत में आज खड़े हैं, माह जून में है, इस समय हम अपने खेत में सनई का, ढेचे का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई आप जब करेंगे तो आपका आपके खेत में क्या है कि ये सब दलहनी फसलें हैं, तो ये जब सड़ गल जाएंगे तो इनका जो सड़ने गलने के बाद जो भी अवशेष है ये आपकी मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ यदि जो किसान भाई अपने खेत में भाई सनई और ढेचे का प्रयोग नहीं कर पाया है, उन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध ये रहेगा कि अपने खेत में कम से कम एक पूरे फसल चक्र में दलहनी फसलों का अवश्य प्रयोग करें, जैसे उर्द का, मूंग का, इस तरीके से जो हमारी फसल है। ये सभी हमारी फसलें क्या है कि खेत की मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता को बढ़ाती हैं। और मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम में यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम किसी भी तरीके से जो हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो खेत में अपने डालें, निःशुल्क है चूंकि वो, और खेत में कुछ न कुछ अवशेष छोड़ें। जैसे उसी अवशेष प्रबंधन में हम अपना कहते हैं, कुछ किसान भाई हमारे खेत को आग लगा देते हैं, आग लगाने के बाद वही हमारे फसल जब जल जाती है तो मिट्टी भी हमारी जल जाती है। तो इन सब चीजों का मुख्य परिपेक्ष ये है कि हम मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन सारी विधियों का प्रयोग करें।
13: अश्विनी सिंह साहब, इतना बढ़िया जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
11: बोला भैया, देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में अश्विनी कुमार सिंह भैया की कितना बढ़िया जानकारी हम लोगों के सुने और समझे के मिलल, और निश्चित रूप से हम लोगों के भी अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए के चाहिए, तभी हम लोगों के अपने जो बाकी माटी के स्वास्थ्य के बारे में पता चले। और हम तक आपकी भैया देखा बाजार भाव आपके हाथे में जो बाकी आयल हुए
12: मंडी के कुंतल में बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हवन।
11: अच्छा भैया,
12: आलू 1000 से 1100 रुपया कुंतल और टमाटर 2800 से 3000, कुंडू 1800 से 2000 रुपया कुंतल और परवल डाल 7000 से 7500 रुपया कुंतल।
11: अच्छा अच्छा,
12: मिर्च 3500 से 4000, भिंडी 800 से 1000, नेनुआ 500 से 600, करेला रहा 1800 से 2000 रुपया कुंतल।
11: हाँ भैया,
12: लौकी 200 से 400, कोहड़ा 300 से 500, बोड़ा 1200 से 1300 रुपया कुंतल रहा, पालक 1000 से 1200।
11: अच्छा अच्छा,
12: 800 से 1000 रुपया, धनिया 4000 से 5000 रुपया कुंतल, खीरा रहल 2000 से 2200 रुपया और अदरक 7000 से 7500 रुपया कुंतल।
11: अच्छा अच्छा,
12: लहसुन 8000 से 900 और प्याज 2000 से 2200 रुपया कुंतल और मूली 1800 से 2 2000, गाजर 1500 से 1800 रुपए कुंतल और चुकंदर 1200 से 1500, वहीं आज फूलगोभी रहल 1500 से 1800 रुपए सैकड़ा और पत्ता गोभी 1500 से 1800 रुपए सैकड़ा।
7: हाँ भैया,
12: नींबू रहल भैया 200 से 250 रुपए सैकड़ा ही रहल। रावतगंज मंडी के बाजार भाव कुंतल में बाबूलाल मौर्य भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद
7: एकदम भैया। हम तक आपकी झूरे झूर नहीं जोन बाकी गीत गौने के जोन माध्यम हुए
12: भैया
7: विजय कुमार साहनी और उनका साथी भैया एक मन फिर सुनावे वही के माध्यम से भैया देखा दिनेश कुमार मौर्या बाबूलाल मौर्या और मुनय भैया के भी धन्यवाद दिहल जा भैया।
12: तो सुना भैया

0: राव भाई
1: हाँ भोला भैया
0: देखो कितना बढ़िया मनमोहन सिंह करोलन विजय कुमार साहनी संगतिया भैया।
1: बिल्कुल
0: और आज हम लोग बैठकी के माध्यम से कितना कुछ जानकारी लेवल के
1: एकदम
0: और साथ साथ जन बाकी साझा भी कर गेल कि वर्मी कंपोस्ट मृदा स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी बा और
1: एकदम
0: तरीके हम लोग के जन बाकी एक प्रयोग भी करे के चाहिए और साथ साथ जन बाकी हम लोग जौन केंद्र सरकार के जौन योजना के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनावे के ऊपर भी बात बत कही हुई।
1: बिल्कुल
0: ये सब के हम लोग के अपना करके और सही सलामत से हम लोग खेती में उर्वरा शक्ति बढ़ावे की जुगत अपनाएं
1: एकदम
0: और बात बत कही देखा भैया बहुत बार लेकिन समय सीमा बांधल हो फिर अगले दिन अगले जानकारी के साथ फिर हम लोग बैठकी में जुटल जाए।
1: हाँ भैया
0: तब तक के लिए हम लोग किसान भाइयों से विदा लेल जाए
1: एकदम
0: और फिर अगले दिन फिर मुलाकात कर जाए। तो भैया बोला
1: जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम ए हरिहरन की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। संगीत था आनंद मिलिंद का और फिल्म थी छुपा रुस्तम। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से फिल्म संगीत कार्यक्रम, और आइए थोड़ी बातें हीट वेव के बारे में कि कैसे हम इस लू से बचें, गर्म तापमान से बचें, क्योंकि गर्मियों में जब तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो लगातार कई दिनों तक तेज गर्मी पड़ती है और इसे हम सभी हीट वेव यानी कि लू कहते हैं, और ये स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, खतरनाक असर डालता है, बहुत से लोग बीमार हो जा रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अगर कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो हम घर से बाहर ना निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, भले ही हमें प्यास ना लगी हो फिर भी हम 10 मिनट पर एक कप पानी तो ज़रूर पिए, और अगर मुमकिन हो सके तो नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और दही मट्ठा, मतलब सब चीज़ का सेवन करें। खीरा, खरबूज, अनार और ओआरएस का घोल संभव हो तो ले लें। बाहर का कोल्ड ड्रिंक ना ही पिएं तो ही अच्छा है। आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ए हरिहरन और श्यामलता की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे बिच्छू फिल्म का गीत। रचना समीर की थी, संगीत आनंद राज आनंद का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं गैंगस्टर से।

के गए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। शाम के 7:15 हुए हैं। आइए देते हैं आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों के संक्षिप्त जानकारी। आपकी जानकारी के लिए पहले ये सूचना, खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार रविशंकर गुप्ता पुत्र रामधनी गुप्ता निवासी कहुआ नाला थाना अनपरा जनपद सोनभद्र जो दिनांक 30 मार्च 2026 से लापता है, हुलिया इस प्रकार है। उम्र 25 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, गेहुआ रंग, गोल चेहरा, शरीर की बनावट सामान्य है, चेकदार पैंट और शर्ट पहने हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। एक और खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार आरती पुत्री स्वर्गीय भैरो निवासी गजराज नगर थाना ओबरा जनपद सोनभद्र जो दिनांक 13/3/2026 से लापता है, हुलिया इस प्रकार है। उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट सामान्य औसत, सफेद सूट और प्लाजो पहने हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आइए देते हैं आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। रात 10 बजे राज्यस्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा। इसका अनुप्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से किया जाएगा। रात 9:25 पर सुनिएगा भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। कार्यक्रम का थीम है आतंकवाद। रात 10:30 से सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी बात। रात 9:15 से यादों के झरोखों से कार्यक्रम में फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे और रात 8:15 पर लेकर आएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। शाम 7:31 पर सुनिएगा सबरस कार्यक्रम, इसमें हम आपको सुनवाते हैं मिले जुले फिल्मी गीत। रात 8 बजे और रात 8:30 पर पेश किया जाएगा गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। तो ये थी आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आपकी जानकारी के लिए हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 हुए हैं। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
6: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते से मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
5: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
7: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगे की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरी घाट और यहार नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक

टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात, छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच, स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हुए हैं। आइए सुनते हैं मिले जुले फिल्मी गीतों का सबरस कार्यक्रम। सबरस कार्यक्रम में मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं।

श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम में हम गीत संगीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन हीट वेव के बारे में आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि हीट वेव की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और ये जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही है। बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के चलते हीट वेव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और भविष्य में इसके और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन हम सभी पेड़ लगाएं और भयावह स्थिति होने से बचें। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दिल का रिश्ता। अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर की रचना को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे जानवर फिल्म से, अलका याग्निक, मनहर उदास और साथियों की आवाज़ों में। आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
6: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोतों, सबरस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं हीट वेव के बारे में। हीट वेव का हम सभी के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। यह स्थिति हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी समस्याओं को जन्म देती है। इसके अलावा हीट वेव का प्रभाव पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, जिससे कृषि और उद्योगों का नकारात्मक असर होता है।

तो इससे बचने के लिए हम कुछ उपाय तो अपना ही सकते हैं। अपने शरीर को हाइड्रेट रखें और अधिक से अधिक पानी पिएं। शरीर में थकान ना आने दें। तो अगला गीत आइए सुनते हैं।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से, और समय हो चला है 7:46। तो हम बातें कर रहे हैं हीट वेव की। तेज गर्मी लगे और पसीना ना आए तो अलर्ट रहिए, सांस लेने में तकलीफ हो तो अलर्ट रहिए, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि हर घंटे यानी कि हर आधे घंटे पर एक कप पानी जरूर पिए। किसी किसी को प्यास नहीं लगती है, अगर कहा जाए कि पानी पियो तो प्यास नहीं लगी है, फिर भी पानी पिए। अगर आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर के पास जानी चाहिए, और डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आप अपने शरीर को डिहाइड्रेट रखें।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

श्रोताओं, जहां तक हो सके तरल पदार्थ का सेवन करें, साथ ही पूरे दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी जरूर पिए। और यूथ को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक या चिल्ड बियर उन्हें ठंडा रखेगी, लेकिन दोनों में ही शुगर ज़्यादा होती है जो शरीर से पानी तो बाहर निकालती है, इससे डिहाइड्रेशन होता है। इसकी जगह अगर यूथ या हम सभी सत्तू, लौकी का जूस, मट्ठा, दही पिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

श्रोताओं, चलते चलते हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास एसी है तो उसे बहुत कम टेम्परेचर पर सेट किए बिना भी आप घर को ठंडा रख सकते हैं। और आप कहेंगे वो कैसे, तो एसी को 27 डिग्री तापमान पर सेट करें और साथ में एक पंखा भी चलाएं, तो यह आपको 4 डिग्री कम यानी कि 23 डिग्री की ठंडक का एहसास देगा और इससे आप बिजली भी बचा सकते हैं। तो सावधानी रखें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और दीजिए सबरस कार्यक्रम से लक्ष्मी सिंह को अनुमति। नमस्कार।

FM 107.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम। आगाज करते हैं अशोक खोसला की गई गजल के साथ।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे अनवर और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म थी हीर रांझा। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोतों, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। हम बातें कर रहे हैं लू से बचने की, यानी हीट वेव से। गर्मी से बचने के लिए ज्यादातर लोग घर में समय बिताते हैं, ऐसे में घर के तापमान को नियंत्रित रखना भी बहुत जरूरी है। रात की हवा का इस्तेमाल घर को ठंडा करने के लिए करें। इसके लिए अंधेरा होने पर खिड़कियां खोल लें, लेकिन दिन में जब सूरज की गर्मी बढ़ती है तो घर में प्रवेश करने से रोकना जरूरी है। इसके लिए हम खिड़कियों को बंद रखें, खिड़की पर ग्रीन पर्दा पहले लगाएं, जाली वाला जो ग्रीन पर्दा आता है उसे लगाएं, और उसके साथ ही मोटे पर्दे का भी इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि बाहर की रोशनी को रोकने में मदद मिलेगी और घर का तापमान स्थिर बना रहेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

शब्बीर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कुदरत का कानून फिल्म का गीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं खतरों का खिलाड़ी फिल्म का गीत।

अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे खतरों का खिलाड़ी फिल्म का गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम। आगाज करते हैं इशरार अंसारी की लिखी हुई गजल के साथ। फनकार हैं चंदन दास।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे अशोक खोसला की आवाज़ में ये गज़ल। आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज़ में इब्राहिम अश्क की लिखी हुई गज़ल को।

0: चंदन दास की आवाज में अभी आप सुन रहे थे इब्राहिम अश्क की लिखी हुई गजल को। इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद 9 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। आइए चले अपने दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1,000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
4: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
3: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
6: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जेसीएम के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
8: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
7: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low-rainfall districts. Our correspondent has filed this report.
9: The Agriculture Minister gave a clear message that protecting farmers' interest is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. Mr. Chauhan gave clear directions that full preparations should be made in advance in those districts where there is a possibility of low rainfall or uneven rainfall. He said that such districts should be clearly identified and crop-wise contingency plans should be prepared in coordination with the state governments so that farmers can be provided immediate alternatives, advice and support that in any weather challenge situation. He strongly emphasized that special attention should be given to water conservation, moisture management, intercropping and alternative crop patterns. With Suparna Sekia, Rohan, Akashwani News, Delhi.
7: Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi, during which consensus was reached among six states on the long-pending Keshav multi-purpose dam project aimed at rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign an MOU for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for approval. The Supreme Court today sought response from the centre and states on a plea alleging the misuse of the Unique Identification Authority of India issued Aadhaar cards as proof of citizenship, domicile and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. A bench of Chief Justice Suryakant and Justice V. Mohanna issued notices to the centre and all states and union territories. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles, or EFR, will soon be revived, with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kursang under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. He alleged that the previous state government led by Mamata Banerjee had frozen recruitment into the Eastern Frontier Rifles. The Chief Minister said that EFR, once regarded as a historic force, had been reduced to only two battalions during the previous regime. Mr. Adhikari further announced that recruitment to the state police force would soon be opened, creating employment opportunities for a large number of Gurkha youths. He added that at least 30% of seats in state recruitment would be reserved for women. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, the farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we will focus on Narendra Modi government's zero tolerance policy against terrorism.
10: Last year, on the intervening night of 6th and 7th of May, Operation Sindoor sent a clear message to the world that India does not seek war, but terrorism will not be tolerated. Operation Sindoor drew a new red line that if terrorism is a state policy, it will be met with a direct and forceful response. Targeting strongholds of Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, India successfully destroyed 9 major terrorist launch pads located in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. More than 100 terrorists terrorists were killed in this operation. There was widespread global support, with numerous global leaders extending their support to India. Talking to Akashvani News, Lieutenant General KJS Dhillon, retired, who was the 15th Corps commander in Jammu and Kashmir, praised the intelligence of government agencies during Operation Sindoor.
4: The intelligence which was gathered over the 15 days period, or the gap in between Pahalgam and terror strikes on 6th, 7th May 2025, intelligence was so accurate, acquired by various means, collated, synthesized, and then acted upon.
10: Meanwhile, to secure its land borders spanning over 15,000 kilometers across seven neighboring nations, India today conducts its effective foreign policy guided by the principle of nation first, while simultaneously advancing towards self-reliance in the defense sector. Talking to Akashvani News, Professor Anup Kumar Day from Silchar said open border was a huge issue in Assam, and Narendra Modi government has worked steadfastly to address this issue.
11: Since the Prime Minister Narendra Modi took charge, he highlighted this biggest issue of Assam, and today fencing has been completed in most of the areas. Because of that, not only infiltration from there has been stopped, but also the illegal trade that used to happen from there has been cut off.
10: NDA government remains resolute and deeply committed to a policy of zero tolerance against terrorism. With Anand Kumar, Suparna Sekya, Akashvani News, Delhi.
7: Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupinder Yadav today held a detailed review along with Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan on crop residue management. The meeting also discussed prevention of stubble burning in the context of air quality management in Delhi NCR and adjoining areas. In a social media post, the minister said that the review was focused on ways and means to efficiently and effectively manage and monitor and crop residue in a bid to combat air pollution in Delhi NCR. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism, or JCM, under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction, and sustainable development initiatives. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the rules of implementation were adopted on 8th of June this year, following the Memorandum of Cooperation signed between the two countries last year for the joint crediting mechanism. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the MOU reached between the US and Iran. US has not clarified whether Lebanon is part of the final agreement. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu yesterday described the agreement as US President Donald Trump's decision, noting that Israel had its own priorities and would remain in a buffer zone in Lebanon as long as necessary. India Meteorological Department, IMD, has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Similar weather conditions are expected over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Andaman and Nicobar Islands. The Met Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Fencing Association of India, FAI, has officially announced the Indian senior team for the 26th Senior Asian Fencing Championships 2026, which will be held in Delhi from 19th June to 24th of June. Marking a historic milestone, India will host the prestigious continental event for the first time. Over 30 countries and more than 400 top athletes will participate in this high-stakes competition. India's 24-member squad comprises 12 women and 12 men and will be led by CA Bhavani Devi, India's first and only fencing Olympian. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in a Group 1 clash at New Jersey in United States tonight. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group 1 encounter at Boston Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Front

श्रोतो, गर्मी का मौसम अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है, जिनमें से सबसे गंभीर समस्या होती है हीटवेव की। हीटवेव एक ऐसी स्थिति है जहां तापमान सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है, और आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो रहा है। इसलिए इसके कारण हम सबके जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसे में हम क्या करें कि हम अधिक से अधिक पानी पिएं, और अगर हमें थकान लग रहा है, चक्कर आ रहा है, मिचली हो रही है, सिर दर्द और अत्यधिक पसीना आ रहा है, तो हम तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर की निगरानी में हम अपने आप को रखें। आइए सुनते हैं प्यारा से ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: श्रोताओं, गर्मी के दिनों में सेंधा नमक खाने से हमें बचना चाहिए। साथ ही खाते समय भोजन की मात्रा कम रखें और ऐसे मौसम में भूखे पेट या तुरंत भोजन करके बाहर न जाएं, ताकि शरीर ठंडा और ऊर्जा से भरा रहे।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, चलते चलते हम यही कहेंगे कि तेज गर्मी में लू से बचें और हीट वेव से बचें, ज़्यादा कैफीन और अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। आज का थीम है आतंकवाद।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
2: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक

0: अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो इमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM2.5 और PM10 ये दो जो तत्व, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी

0: इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहां प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026-12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले 3-4 साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहां पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे

0: सरोवर है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
1: जी।
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी, हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो

0: भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो इमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए। सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
1: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
0: जी।
1: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नई एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
0: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
1: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
0: जी।
1: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
0: जी।
1: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
0: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
0: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम, थीम थी आतंकवाद।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे लखनऊ केंद्र से राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आप सुनेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण।
2: नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की।

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बापे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं सीधे मैदान की ओर।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थी और न ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया, उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है, डियोगो माराडोना। साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहाँ पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हराकर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

0: time for Africa.
1: अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम से इसे जाना जाता था, तो मल्ल युद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
2: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे।
1: जी, जी।
2: तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा
1: जी।
2: और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में।
1: जी जी।
2: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है।
1: जी जी।
2: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
1: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे, तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं आप?
2: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच में अंतर है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क आया हुआ है। पहले जो कुश्तियां थी हमारे पास मैट तो थे, मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीजें नहीं थी। उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी। हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते थे। मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी है और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी, लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है, जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
1: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है, आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
2: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन।
1: जी।
2: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है और ये चीज सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती, इस चीज का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है तो उसका खिलाड़ी उस चीज को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
1: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है, तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप अपने खिलाड़ी को जो आपका शिष्य है उसे किस तरह समझाते हैं या आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे। तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे, तो हम इस चीज की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं जिससे कि उसके हारने पर उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज हमेशा तैयार रखते हैं, बेटा ये आखिरी नहीं है, ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो, क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा।
1: जी।
2: तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई, उसको आजकल आधुनिकता की जैसे मैंने बात की तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो रही है तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं साइकोलॉजिकल, और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है, इससे आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा, उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
1: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
2: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें, उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, डाइट प्रोग्राम क्या है
1: जी,
2: उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे ही पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम लोगों ने अच्छा अपना मेडल खो दिया
1: जी।
2: तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते। और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती है।
1: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
2: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम

0: में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि
1: जी
0: हम
1: जी
0: अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है, जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है,
1: जी
0: आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है, इन सब चीजों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है, तो क्या गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पर जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
1: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
0: प्रॉपर यह है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप,
1: जी।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है, हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो या मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना फिट है, उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं, जब गलतियां करेगा और उसका सबसे बड़ा जो चीज होती है मैंने जो बोला लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है, अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं अगर ओवरलोड है तो नहीं कर
1: बिल्कुल
0: पाएंगे उस चीज को
1: बिल्कुल
0: और गलतियां होती हैं, तो
1: जी।
0: हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
1: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ एक दो पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
0: देखिए कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं, हम मैच चल रहा है कभी हो सकता है कि आप एक दो पॉइंट से आगे हैं एक दो पॉइंट से पीछे चल रहे हैं लास्ट है, जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, छोड़ना नहीं है, हमारे वर्ल्ड में 2 मेडल आए एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कंडीशन आप बता रहे हैं मेन कंडीशन वही थी, हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउ एकदम लूज कर रहे, मेंटली स्ट्रांग थी, उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश, तो एज ए कोच हम ये कहते हैं बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो जितनी आपके पास वो आप वहां पे लगाओ, साक्षी मलिक ने लगाया था मेडल लाया, नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 12-4 से हार रहे थे लास्ट में बाई फॉल करके 30 सेकंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती, तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है, और एज ए कोच जो भी साथ में होता है हमें अदर कोच है जो भी टीम कोच गया वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है बेटा आप अपना ऑल आउट करो जितना है आप अपना पोटेंशियल या जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहां पे।
1: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की, तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है?
0: मुख्य चुनौतियां तो देखिए हमारे पास सबसे ये थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे, मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ लोग डोमिनेट हैं कि हाँ हमारी बच्चियां जाएं, और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं को ये बहुत पाबंदी हुआ करती थी, मगर महिला और उत्तर प्रदेश आज के डेट में महाराष्ट्र भी है हिमाचल भी है राजस्थान भी है बिहार है झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर, और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं, कुश्ती बहुत अच्छा गेम है, महिलाओं की जहां तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है, आप ना लाइए मेडल के लिए मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए लेकर आइए।
1: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना चाहिए?
0: देखिए एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है,
1: जी
0: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है मगर स्किल भी है, तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है,
1: जी
0: 10 साल तक बच्चा हर चीज को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना कि 10-11 साल की उम्र से आप बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अब ये प्रोफेशनली इस तरफ जाना चाहता है
1: जी।
0: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
1: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
0: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है, ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफी अच्छे मेडल्स आए, गोल्ड मेडल्स लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं। इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
1: जी, ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
0: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं,
1: जी
0: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल, अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में
1: जी जी
0: एक
1: जी
0: दो अंकों के अंतर से
1: आ रहे हैं
0: मेडल से रह गए थे,
1: जी
0: उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है,
1: जी
0: अमितिम पंघाल
1: जी
0: और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी, जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग
1: जी
0: करती
1: जी
0: हैं।
1: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
0: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है अभी एशियन गेम्स ट्रायल में, वो दीपक पुनिया से ही हारा।
1: जी
0: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियंस बहरीन में हुए थे, उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए,
1: जी जी
0: यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
1: जी जी
0: चंचल सिरोही है उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीमें हैं हमारे पास, बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में
1: जी
0: जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में हम, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: जी ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
2: खेल दर्पण,
3: खेल दर्पण,
2: खेल दर्पण।
4: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का
5: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हम लेकर आएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

श्रोताओं, आपका इंतजार हुआ खत्म और हम लेकर आ गए आपकी बात कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का पहला गीत।

0: लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक

0: बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, आइए बातें करते हैं हीट वेव के बारे में, यानी कि लूह लगना, हीट स्ट्रोक। यह सबसे गंभीर और जानलेवा स्थिति है जिससे शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट या 40 सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है। तो लक्षण कैसे हम महसूस करें या कैसे जाने कि इसको हीट स्ट्रोक है? त्वचा का लाल पड़ना, गर्म और सूखा हो जाना, पसीना आना यानी कि बंद हो जाना, तेजी से सांस लेना और दिल की धड़कनें तेज होना, भ्रम की स्थिति स्पष्ट या न बोल पाना, बेहोशी छा जाना, ये सब अगर लक्षण दिखते हैं तो आप जान जाइए कि घर में किसी को या मरीज को हीट स्ट्रोक यानी कि लूह लग गया है। तो ऐसे में हम अगर घर पर हैं तो घरेलू उपचार सबसे फायदेमंद ये होता है कि प्याज का रस निकालकर हल्का सा गर्म करें और हाथों के हथेली पर और पैर के तलवों पर मले, माथे पर और गले पर, सीना पर मालिश करें जिससे कि घरेलू उपचार हो सके। उसके बाद अगर नहीं आराम होता है तो आप हॉस्पिटल लेकर जाएं, डॉक्टर की सलाह के साथ मरीज को लेकर जाएं। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: श्रोताओं, अगर किसी को हीट वेव हो जाता है या लू लग जाता है तो तुरंत उसे किसी ठंडी या छायादार जगह पर ले जाएं, उसके शरीर पर खूब ठंडा पानी डालें और ORS का घोल दें, नींबू पानी का घोल दें, ठंडा पानी पिलाएं और तुरंत नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें, क्योंकि गर्मी से होने वाली बीमारियां बहुत ही हानिकारक होती हैं और ऐसे में तुरंत प्राकृतिक ठंडक के लिए कुछ तरीकों को आप अपना सकते हैं, जैसे ORS, नींबू पानी, नमक चीनी का घोल और छाछ, बेल का शरबत, खस का शरबत, नारियल पानी, इन सब चीज़ों को देते रहें, पीते रहें। साधारण व्यक्ति को भी ये सब चीज़ गर्मी से बचने के लिए पीना खाना चाहिए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, जहां तक हम खान पान की बात करें तो ताजे फल खाएं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और पानी से भरपूर फलों का अधिक से अधिक सेवन करें और खान पान में सावधानी रखें। बाहर का खुला या बासी खाना खाने से बचें, हल्का खाना खाएं, शराब, चाय या कैफीन युक्त पेय पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी करते हैं। तो इसलिए पानी की कमी को आप पूरा करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

श्रोताओं, चलते चलते हम यही कहेंगे कि घर के बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिए और अपने घर के पालतू जानवरों का भी साथ ही बहुत ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आइए चलते चलते आपकी बात कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

इसी के साथ आपकी बात कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने प्रसारण के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।